रोकन हार्ट सॉन्ग, बिछड़े हुए यादों दोस्तों, और दर्द भड़कीट के प्रोग्राम में आपकी बार पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत के खुदा समझा।

मेरी जिंदगी एक बंद किताब है। मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं। जो खोला वो पढ़ा नहीं, जो पढ़ा वो समझा नहीं, और जो समझा वो मिला नहीं।

0: मिकी बाबू,
1: भर के जरा कोई हाथ ना दे तो दिल जरा क्या करे। अब की बार सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत बुरकना सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फावन इंसानी पर आप चुन है, बहुत से लोग तार करते हैं और कहते हैं कि दब प्लस के जरिए प्रोग्राम नहीं सुनाई देता है, तो फ्रिक्वेंसी दोस्तों दब प्लस का फ्रिक्वेंसी आप लिख कर रख लीजिए। फ्रिक्वेंसी है 105.3 MHz या कनाल 8A। एक बार मैं दोहराता हूँ, फ्रिक्वेंसी 105.3 MHz या कनाल 8A। अगर आपको फाहोन हिस्सा रेडियो सुनना है तो आप चले जाइए दप प्लस रेडियो पर, और इसी फ्रिक्वेंसी पर आप रेडियो को सुन सकते हैं।

सनम हद से आगे बिछड़ने लगे या बढ़ने लगे, ये दिल के बात है, दिल ही तो जाने दोस्तों। प्यार हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसी से हुआ, ये आपको खुद मालूम होगा। इसलिए कि हर एक इंसान जिंदगी में एक बार जरूर प्यार करता है, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने कभी प्यार नहीं किया। अब की बार हमें तुमसे मोहब्बत है। नाइटिंगेल लता एंड नीति एंड मुकेश।

0: कांची।
1: आपने खुद सुना कि ये कांची अपने कांचा से क्या कहा रुक जाना जा दिल तोड़ के, लेकिन मेरे दिल में आज क्या है मैं आपसे नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए।

प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इसे हार करे किसी और से, खुदा करे जिससे इसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता है क्या हुआ तेरे वाला दरभर गीत बिरकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला दर्द भरा गीत, सुबह पे दर्द भरी, सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई माइटी मुकेश के आवाज में।

चाहे जो तुझे दिल से, चाहे जो तुझे दिल से मिलता है मुश्किल से, ऐसा जो कही है बस वही सबसे हसी है, उसके हाथ को तुम थाम लो, उसके हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबा कल हो न हो।

दूसरा डर भरा गीत फिल्म प्रेम नगर से मैं निकाला हूँ। उन दिनों का सुपरस्टार राजेश खन्ना और नाइटिंगेल हेमा मालिनी प्रेम चोपड़ा एस डी बर्मन के म्यूजिक पर हसीनों का पुजारी किशोर कुमार के आवाज़ में ये लाल रंग मुझे कब छोड़ेगा।

अंधेरा गया, सूरज निकल आया। है बेवफा, तुमने प्यार मुझसे किया, तुमने प्यार मुझसे किया और शादी उससे कर डाला। हम बुरे हैं हम जानते हैं, मगर जब तुम बोलते हो तो मैं मानते नहीं।

हे हम महका करेंगे, सितारों का सफर आप सुनेंगे और मशहूर एक्टर जैकी श्रॉफ के बारे में कुछ बातचीत होगा। जैकी श्रॉफ खबोर बॉम्बे में हुआ इन फरवरी 2005 तक। असली नाम जय किशन काकू भाई, पिता गुजराती थे और माँ उर्खूर्स काजस्थान से आई थी। घर पर उतना अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए जैकी ने बहुत कम पढ़ाई किया। एक बार उन्हें ताज होटल में काम मिला, लेकिन डिग्री इसके पास नहीं था तो काम वहीं से रुक गया। एक बेसहारा के सामने खड़ा था तो एक रिक्लामा ब्यूरो का आदमी उन्हें देखा और बातचीत किया, क्यों ना आप मेरे रिक्लामा ब्यूरो में काम के लिए चले आते हो। तो उन दिनों से वो मोदेल वर्ल्ड में कदम रखा और उसके बाद देवानंद ने जैकी श्रॉफ को ले गया बॉलीवुड का फिल्म वर्ल्ड में। पहला रोल उन्हें मिला एक हंटलांगर का, शक्ति कपूर का हंटलांगर था फिल्म स्वामी डाडा में। उसके बाद फिल्म हीरो में होफ रोल जैकी श्रॉफ को मिला और ये फिल्म एक हिट निकला। तू मेरी जानू हो इस गीत में पेश करूंगा, उसके बाद जैकी का कहानी आगे जारी रहेगा। फिल्म हीरो का सॉन्ग

जैकी श्रॉफ, जैकी श्रॉफ 13 भाषा में फिल्म बनाया। निहरी सीवन ताकतक में शारी किया फिल्म प्रोड्यूसर आयशा दत्त के साथ। दो लड़कन है, बेटा का नाम है टाइगर श्रॉफ, दो भी इन दिनों में एक्टर है बॉलीवुड में। जैकी ने आयशा को प्रशासक के सामने देखा और आयशा ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, 13 साल की उम्र था, फिर भी दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया। जैकी का रूप नाम दोस्तों, इन्हें लोग अभी जग्गू दादा के नाम से पुकारते हैं। अभी गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा क्यों।

फिल्म आईना का सॉन्ग अभी आपने सुना, जैकी श्रॉफ यूही चावला के साथ फिल्म में काम किया। सितारों का सफर आप सुन रहे हैं राजन के साथ। जैकी का नाम किस तरह से जग्गू दादा निकला मैं आपसे बताता हूँ। जैकी श्रॉफ का एक बड़ा भाई था जिन्हें लोग जग्गू दादा के नाम से पुकारते थे, इसलिए कि गाँव में जब कोई के प्रॉब्लम होते थे तो जाकर इनका बड़ा भाई जग्गू दादा ने ये संभालते थे। तो एक बार एक छोटा सा लड़की पानी में गिर गया और पानी में डूब रहा था, उसी समय जग्गू ने देखा और तुरंत पानी में कूदा, ये लड़की को बचाया लेकिन खुद पानी में डूबकर मर गया। तो उसी दिनों के बाद गांव के लोग सभी फैसला किए, आज से आपका नाम जग्गू दादा हम लोग रख देते। तो उसी रोज से जैकी श्रॉफ का नाम पड़ गया जग्गू दादा। जैकी श्रॉफ को एक बार फिनांशियल प्रॉब्लम था दोस्तों, उसका मकान और गहना वगैरह वगैरह सब बेचा जाता, लेकिन प्रॉब्लम होता है जब तक किसी ने जब संभाल लेता है तो अच्छा होता है। एक गीत के बाद मैं आपसे बताऊंगा।

गुडाराया जैकी श्रॉफ। जैकी श्रॉफ का पैसे का प्रॉब्लम हुआ दोस्तों, खर्च में ज़्यादा था और मकान में भी लगाया, तो ये एक हेल्थ की तरह ये हम लोग कहते हैं लाला लालक पास गए, वहाँ पर पैसा लिया लेकिन भरने के समय प्रॉब्लम हुआ। तो सलमान खान ने ये बात सुना कि उनका मकान ये सब बचाव वाला है, तो सलमान खान जाकर ये हेल्थ की तरह लाला से बातचीत किया और ये प्रॉब्लम हल्का हो गया। निहरी ट्वेन तख्त तक से आज तक बॉलीवुड में काम कर रहा है, लगभग 250 फिल्मों में काम किया। जैकी श्रॉफ का फेवरेट एक्ट्रेस आशा परेख है और परिवार के साथ इन दिनों में बॉम्बे में रहता है।

सितारों का सफर मशहूर गायक कुमार सानू, असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य, 20 अक्टूबर 1975 में पैदाइश हुआ। शादी किया सलोनी से और लड़कन शानन सानू, जान कुमार सानू, आना सानू। पिता के नाम थे पशुपति भट्टाचार्य, वो एक सांगर और कोपोनिस्ट थे। पहला गाना कुमार सानू एक बंगाली गाना गाया फिल्म टीन कनी 1973 में, जो फिल्म बना। उसके बाद कुमार सानू का शौक था गाना गाने को, लेकिन पहला गाना गाने से पहले कुमार सानू रेस्टोरेंट्स में किशोरदा का फेवरेट गाना गाते थे और उसका बड़ा फैन भी था किशोर कुमार का। तो पहला गाना गाने के बाद जगजीत सिंह ने उनको देखा कल्याण जी आनंद जी के स्टूडियो में, वहाँ पर कुमार सानू मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, ये गीत पेश करता था। तो जगजीत सिंह इसे कॉन्टैक्ट किया और बातचीत किया। जगजीत सिंह ने कहा कि ना आप बॉलीवुड के गाना गाते हो, तो इसी तरह से कुमार सानू कदम रखा बॉलीवुड में। करण जी आनंद जी ने एक गीत लिखा और उन्हें कहा कि ये गीत को आपको पेश करना, तो 15 मिनट के अंदर ये गीत को पढ़कर और गीत को गाया। फिर करण जी आनंद जी ने कहा कि आपका नाम जो है केदारनाथ, उसको मैं रख देता हूँ कुमार सानू, इसलिए कि आप किशोर कुमार का बड़ा फैन हो, तो कुमार और सानू, तो तभी से इनका नाम पड़ गया कुमार सानू। कुमार सानू बहुत से डुएट भी पेश किया है दोस्तों, एक डुएट में पेश करूंगा साधना सरगम के साथ जो गाया है जब से तुमको देखा।

कुमार सानू, कल्याण जी कुमार सानू को मौका दिया फिल्म जादूगर में गाने को और तुरंत दोस्तों इस फिल्म में प्राइज पिया। उसके बाद 5 साल लगातार कुमार सानू ने फिल्म फेयर अवार्ड पिया बेस्ट सिंगर में फिल्म जादूगर, 99 में फिल्म साजन, 99 में फिल्म दीवाना, 92 में फिल्म बाजीगर, 93 में फिल्म अ लव स्टोरी और 2009 में पद्मश्री का पद्म मिला कुमार सानू को भारत के सरकार से। कुमार सानू को भी बहुत स्टेज मिला, बहुत मदद मिला अनु मालिक से और साथ ही साथ अनु मालिक उनका नाम रखा किंग ऑफ मेलोडी। किंग ऑफ मेलोडी जैसे मैंने कहा बहुत से डुएट भी गाया है और आलका के साथ दिल कहता है आप सुनेंगे।

भानु या किंग ऑफ मेलोडी 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और दोस्तों कुमार सानू को मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में उनका नाम लिखा गया इसलिए कि एक रोज में एक दिन में अब इन डाक 28 गीत ये पेश किया 28 नंबर कुमार सानू ने बनाया है एक दिन में। तो मैं सोचता हूँ किसी सांगर ने किसी गायक ने ये काम नहीं किया होगा जो कुमार सानू ने किया। कुमार सानू का स्पोर्ट हॉबी जो है वो है फुटबॉल और उसका फेवरेट एलस्ताल जो है वो है ब्रासिलिया का, इसलिए अपन बेटा का नाम भी रख दिया है सीको। आप जानते हैं उन दिनों में एक बकेन स्पेलर था बरुन स्पेलर ब्रासिली का सीको, तो उसी नाम से अपन बेटा का नाम भी रख दिया है कुमार सानू सीको। कुमार सानू चांद सितारे फूल और खुशबू ऋतिक रोशन अमिताभ पाटेल का फिल्म चांद सितारे

कुमार सानू, पद्मश्री कुमार सानू, न्यू दिल्ली में कुमार सानू को एक एक स्कूल है, विद्या निकेतन स्कूल, जहाँ पर गरीब लड़के पढ़ाई करते हैं। कुमार सानू का फेवरेट गायक किशोर कुमार और जगजीत सिंह, और एक्टर है अमिताभ बच्चन। कुमार सानू ने 14 ताल दोस्तों, फेरतिंग ताल एंड फेरतिंग ताल हिंदी से मैंने रखा सॉन्ग, 14 भाषा में गीत पेश किया है। परिवार के साथ बॉम्बे में रहता है और आज तलु के गीत गाता है और नए नए गीत लेके आता है, और उसी तरह से उनका आवाज़ भी मीठा है। मिस्टर सानू के बारे में भी आपने कुछ बात सुना।

सितारों का सफर यहाँ से समाप्त होता है। जब से तुमको देखा है, डामिनी फिल्म का नाम है, मिस्टर सानू एक बार फिर साधना सरगम के साथ।

मिस्टर सानू जब से तुमको देखा है सनम। दोस्तों रातों का राजा हूं मैं, आप क्या सोचते हो? अभी तो रात हो या दिन, नहीं दिन हो या रात कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग रातों का राजा होता है वो उसी तरह से भी रहता है, दिन के भी उसी तरह से और रात भी हो जाता है तो उसी तरह से। कई रातों का राजा से मुझे मुलाकात हुआ है, कई रातों का राजा को मैं जानता हूँ। आप भी जानते हो किसी रातों का राजा का तो आप स्टूडियो में तार करके बता सकते हो।

मित्रों, मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। और ये मन ही है मित्रों, ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकता हुआ रहता है। अगर जीवन का सफल बनाना है मित्रों, तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है।

मित्रों, मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। मित्रों, इस पर विश्वास कीजिए। और गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया है, वही मन में पैदा होने वाली विकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है, बड़ी दूर रहता है। मित्रों, साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर लेता है। दोस्तों,

0: मित्रों, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा वो। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग, मित्रों, जबकि बुद्धिमान लोग विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। अब पता नहीं है कि आप बुद्धिमान हो या कैसे हो, मगर हम यही आशा रखते हैं कि आप बुद्धिमान हो। मित्रों, जो हम आपसे बातें बतलाते हैं, आप इसे हल्का में ना लीजिए, हवा में नहीं लीजिए, जीवन में उतारने की कोशिश करना, तभी आपके बाकी जीवन जो है, तभी उसका और आनंद उठा पाओगे। अन्यथा वही घिसते रह जाएंगे हम, भले ही धन दौलत सब कुछ है, मगर पूछिए अपने आप से कि आपके अंदर में वो खुशी है, हौसला है, कि कुछ खामियां महसूस कर रहे हो आप, कि कुछ कमती है अभी, तो यही है कमती। ज्ञान के सागर में से जितना पानी ले पाओ, जितना ज्ञान ले पाओ, लीजिए, वो सब आपके काम में आएंगे। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।
1: भाई बहनों, स्वयं का बचाव करने के लिए कभी दूसरों को कसूरवार मत ठहराओ, क्योंकि स्वयं के पास सत्य को प्रकट करने का अपना ही तरीका है।

दोस्तों, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना ये संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। बहादुरी से भरा हुआ है मित्रों, कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान करना हम क्या बतला रही है, सार्वजनिक बात है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं मित्रों, तभी वे हमला कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत बच के रहना चाहिए दोस्तों।

दोस्तों, झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता। फिर से बोल रहा हूं, आप इसे हमेशा याद रखना। झूठ कितना भी बलवान क्यों ना हो, वो सत्य को नहीं दबा सकता, नहीं दबा सकता। अपने विचार को पवित्र बनाओ मित्रों, क्योंकि व्यक्ति अपने विचार से ही अनंत काल तक जीवित रहता है, अनंत काल तक जीवित रहता है मित्रों।

साथियों, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हाँ, इतना मजबूत बनो, स्ट्रांग हो जाओ मित्रों। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाए और न्याय न मिले तो युद्ध करो। वास्तव में मुसीबत साथ देने वाला मित्र ही सच्चा मित्र होता है। आपको है एक ऐसा मित्र, एक दोस्त कि सब खब्बू है, आए खाए पिए मस्ती में रहते हैं और प्रॉब्लम भाई तो भागे हैं जैसे हरना। नहीं, ऐसे इस तरह का दोस्त आपको नहीं है, हम मजाक कर रहे हैं मित्र। आपका मित्र तो बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे अच्छे लोग हैं, ये तो पता है मुझे। और ध्यान रखना इसको भी दोस्तों। प्रार्थना ऐसे करें जैसे कि सब कुछ भगवान पर निर्भर है, और काम ऐसे करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। खुद को प्रभावित करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करें और दूसरों को प्रभावित करने के लिए

करतुंडा महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

सुनने वालों की सेवा में मैं हूँ आपका सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गई है। सभी को एक शुभ प्रभात कहता हूँ।

जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना किया जाता है भगवान से कि उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिसके घर पे दुख है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपका दुख निवारण होए। जिनका घर में नया बच्चे ने जन्म लिया है परिवार को हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

जो अपने तैयारी कर रहे हैं नौकरी के जाने के लिए, तो आपको कहा जाता है कि आपको फैन दाखतुखवंस। जो तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ने के लिए, तो ये जरूर कहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो अभी तैयारी कर रहे हैं अपने सफर के लिए या कहीं और जाने के लिए, तो ये मत भूलना कि श्री गणेश पहले तो आगे कार्यक्रम चलता है। जो और देश से हॉलैंड देश में और आए हैं फकांसी के लिए, तो आप सभी को हार्दिक से स्वागत किया जाता है। ऐसा सोचिए कि आप एक सुंदर सा देश में आए हैं। देशों में जो एक सुंदरता हॉलैंड के है, आप जरूर दर्शन करके दे आइए। और जो आज अपना मन में ये रख रहे हैं कि हमें अब सफर पे जाना है, हमें कुछ दर्शन करना है, तो जरूर आप अपना तैयारी में लगे रहिए। क्योंकि कहते हैं कि ये सुंदर काया को हमें जो प्राप्त हुए है, इनके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं। और जब तक ये सुंदर सा काया हम सबके है, हम ना सिर्फ सत्संग ना सिर्फ सफर पर जो चाहे और अपने सुंदर शरीर से यानी कि अपने जीवन में जो करना चाहे, पढ़ना लिखना कुछ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्योंकि संतों ने कहा है कि किस कारण हम इस दुनिया में आए हैं, जरा सोचो सरा और समझो सरा।

कहते हैं कि आने के बाद एक दिन जाना भी है और जाना कहाँ है बस यही बात को पता नहीं है।

सभी को एक शुभ प्रभात कहते हुए कुछ भजनों के साथ कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं।

सुन वालों, कहते हैं कि केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होते हैं। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सभी ऐसा भाव है जो पराये को भी अपना बना देते हैं।

मन से शक्ति देना। कहते जो चीज हाथ में ना हो उन्हें मन से भी आजाद कर देना चाहिए।

सुनने वाले सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपका रेडियो इस समय चुन है फाहुन एफएम पे, जो इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक देशों में सुना जा सकता है।

जो इस समय तैयार हो रहे हैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए या सफ़र कर रहे हैं, तो आपको बहुत सा और ये कहना चाहूँगा कि अंदाख फॉल फ्रोइद। और गांधी जी का ये संदेश भूलना मत, उन्होंने ऐसा कहा था कि हमारे जो देश है हमारे लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना कोई गलत बात नहीं है, पर हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं ये सोचना ये समझने वाला बात हो जाता है। गांधी जी का ये बात भी आपको जरूर ख्याल होगा कि बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो।

कहते हैं कि उदासियों के विजय तो बहुत है जिंदगी में, कहने के तात्पर्य है उदास होने का वजह तो बहुत होते हैं जिंदगी में, पर बेवजह खुशी रहने का मजा कुछ और है।

कहते हैं कि गरीबों की दुनिया जीने नहीं देते, पर इस बात पे किसी ने और कुछ लिखा है कि स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है। स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होती है, इसमें दर्द थोड़ी देर का होता है लेकिन फायदा जीवन भर रहता है।

जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी के हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसे भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। रिश्तों का बगिया

een film, Joe Banayaga, 1977 में, 1977 में बनाया गया फिल्म, एक फिल्म जिसमें बड़े बड़े कलाकारों ने काम किया, जैसे कि विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अमिताभ बच्चन, नीतू सिंह, प्रवीण भाभी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन।

एक फिल्म जो पिक्चराइज किया गया था जिसमें तीन बच्चे जो बिछड़ जाते हैं और फिर पालन पोषण जो अनेक अनेक संप्रदाय में होता है, एक जो जा कर के पुलिस बनते हैं, दूजा कवाली गाते हैं और तीसरा जो जा कर के बार कीपर बनते हैं। तो उसी फिल्म से एक और गीत हम निकालेंगे और आपके लिए रखने वाले हैं।

शिरडी वाले साई बाबा फिल्म जो बनाया गया 1977 में, कहा जाता है कि 184 मिनट तक जिनका रन टाइम यानी कि कुछ 3 घंटा का फिल्म जो जिनका और रिलीज डेट 1977 में हुआ था। उस समय जो ये फिल्म बनाया गया था और जिनका लेखक खास करके कादर खान जी ने और ये फिल्म को फिल्म का राइटर कहलाए हैं, यानी कि उन्होंने फिल्म को जो डायलॉग से अपना और सजाए हैं और डायरेक्ट जो किया गया है मनमोहन देसाई के जरिए। सुनने वालों, ये एक ऐसा सुंदर फिल्म जो बनाया गया था उस समय के बात है, जो काफ़ी और चला बॉक्स ऑफिस में और जा करके जिनमें बड़े बड़े एक्टर्स अपना सहयोग दिए। इनमें से सबका अपना अपना होता है, तो हमें जो उस समय का एक्टर हुआ करते थे जीवन, जिनका डायलॉग का और प्राण जो होते थे जो उस समय पे और अपना कला से प्रदर्शन करते थे, तो कितना खूबियां होते थे उसके। हम एक और इसी फिल्म से निकाला गया गीत रखने की कोशिश करेंगे।

अमर अकबर एंथोनी फिल्म से निकाला गया है, जिसमें मुकरी का रोल भी बड़ा अजीब था, प्यार का दुश्मन बना रहा। और ये सुंदर सा फिल्म जो निकाला गया 1977 में, जो एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनी। सुनने वाला हम अगला गीत, जो आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं।

ये फिल्म डायरेक्ट किया गया मनमोहन देसाई। कादर खान को जो जानते थे, जो परिवार में जिसे वो जुड़ा रहता था, तो उनको कहावत ये है कि अपना जब डायलॉग उनके लिखने के समय आते थे तो वो भारत छोड़कर हांगकांग चले जाते थे। वहाँ वो आराम से अपना डायलॉग्स आदि लिखते थे और फिल्म को और सजाया जाता था। सुनो वालों, ये स्क्रीन प्ले जो किए है वो है प्रयागराज शर्मा जी ने। इस फिल्म में म्यूजिक दिए हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, अनंत बख्शी के लिखा हुआ लिरिक्स बाय अनंत बख्शी।

ये फिल्म जो पिक्चराइज किया गया पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी, पुष्पा शर्मा जी का स्टोरी आईडी, उनके आइडिया से ये फिल्म को और लिखा गया। जिनमें कुछ कलाकारों अब नहीं है दुनिया में, अगर शायद आप अभी ये फिल्म देखे नहीं होंगे तो मैं कौन होता हो आपके सजेस्ट करने के लिए। यूट्यूब पे आप जरूर देख सकते हैं, कुछ 3 घंटा का फिल्म। इसमें ये सीख हमें मिलते हैं कि शायद हमारे और हम अपने भाइयों के साथ बिछुड़ गए होंगे, बहनों के साथ बिछुड़ गए होंगे। आज वो परिस्थिति आ गया कि शायद एक दूसरे को देखने को और तरसते हैं। तो जरूर इस फिल्म को देखें और इस पे जरूर अपना जो 2 घोड़े होते हैं हमारे दिमाग में, का नाम पॉजिटिव और दूजा का नाम नेगेटिव, उनके इसके बारे में सोचने के अवसर दीजिए। क्योंकि कहा जाता है जिसके आप ज्यादा खुराक देंगे वो ही जीतेगा।

सुनने वालों, ये फिल्म याराना से निकाला गया ये सुंदर सा गीत, एक फिल्म जो 1981 में रिलीज हुआ, 1981 में रिलीज हुआ ये फिल्म, जिसमें स्टारिंग अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान अपना कला से प्रदर्शन दिए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि याराना वही होता है। इस गीत को जब हम चलाते हैं तो हमें भी इस बार को हर बार याद आ जाते हैं कि हमारे पुराने रेडियो का कलेखा जैसे महेंद्र भाई, मित्र मनोज और इसी प्रकार से कितने जो दोस्तों अब साथ में नहीं है, तो जो साथ में है उन्हें हम जरूर याद करें और उनसे मिलते रहे, क्योंकि कहा जाता है हम मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। एक और सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे।

एक और फिल्म जो फिल्म 1981 में बनाया गया था, नसीब फिल्म से एक सुंदर सा गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है।

0: सुनी।
1: आप? आपने तो कहा था कि
0: ठीक ही तो कहा था। 5-स्टार होटल में रहता हूँ, भूखों को खाना खिलाता हूँ। ये वो साहब है ना, उन्होंने चिट्ठी दी आपको, रात को खाने पे बुलाया।

सुनने वालों, ये गीत जो निकाला गया फिल्म का नाम नसीब, जो 1981 में रिलीज हुए 1 मई 1981 को, बॉलीवुड एक्शन थ्रिलर हिंदी रोमांटिक म्यूजिकल मूवी, जिसका डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी ने बड़े बड़े एक्टरों के साथ और इसमें काम किए, जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, ऋषि कपूर, हेमा मालिनी, रीना रॉय, किम प्राण, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर।

कहते हैं कि दोस्ती इंतहाम लेते हैं दोस्तों, पर ऐसा ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता, अपने किरदार से इंसान खुद महकता है।

है जिंदगी आ बैठ, है जिंदगी आ बैठ, कहीं चाय पीते हैं, तू भी थक गए होंगी मुझे भगाते भगाते। सुनो लो, मैं हूं आपका सेवक संजय और यहां तक मैं आपके साथ जुड़े आ रहे। आशा ये रखता हूं कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ चलाया गया। और यही आशा करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको अच्छा जरूर लगे होंगे। सुनो लो, अगर आपको कोई ऐसा लगा हुआ होगा कि हमें अब अपना और सफ़र की ओर करना है, यानी कि सफ़र करना है अपना, और कोई प्रकार से जैसे भारत और ऐसे मलेशिया कितने सुंदर सुंदर देशों है जहां देखने के चीज़ बहुत है, जैसे कि कहीं भी जा सकते हैं और अपना सफ़र करने के, यानी कि फकंसीफिरन।

जरूर अपना ध्यान रखना और यह बात मत भूलना, सबको अपने कर्मों का पता होता है, यूं ही गंगा पर भीड़ नहीं होता। सभी को एक शुभ दिवस। नमस्कार।

है जानी, तुमने भी प्यार किया है, ए आशा है कि आप भी प्यार किया होगा और आगे में ही करते रहेंगे। कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। एक बार फिर हमेशा कहूंगी कि आपको स्वागत।

यहाँ से आपके लिए सुनेंगे एक बार फिर, नाना एक बार फिर हाँ सुनेंगे हम किशोर दा जी की आवाज में, लता जी की आवाज में साथ दे रहे इस गीत में मोहम्मद रफी जी और खास तौर पे मुकेश जी, ये चारों मिलकर हमको क्या सुनाने वाले हैं, जरा हम सुने तो।

प्यार क्या करे, किशोर लता जी, मोहम्मद रफी जी वो साथ दे रहे थे, मुकेश जी। जी हाँ, आपने सुने फिल्म का नाम अमर अमर अकबर एंथनी। और कहते हैं कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।

आशा भोसले जी के आवाज में सुने हम फिल्म सुहाग से हमने निकाल दी है। हाँ, सुहाग फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन भी अपना रोल अदा की है।

0: और ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है फिल्म दोस्ताना से, किशोर दा और आशा भोसले जी की आवाज में। कि दिल लगी ने दी हवा और थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं बल्कि थोड़ा सा प्यार उठा। कहते हैं कि सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती। कहते हैं कि उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। और एक बात ये भी है कि दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं। दिल के रिश्ते जैसे आपके हो मेरे, दिल के रिश्ते किस्मत से बनते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से रोज होता है।
1: चार पैसे क्या मिले भाई, क्या मिले खुद को।

0: काहे पैसे पे इतने गुरूर करते हो? फिल्म का नाम लवारिस, उसी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए। मेरे प्यारे सुनने वालों, फाहुन रेडियो से आप जुड़े हैं, आप और मैं यहाँ से आपके लिए ये सुंदर सुंदर गीत चुनकर और लाई हूँ। हम मोहब्बत को आम करते हैं, हम मोहब्बत को आम करते हैं, हर किसी को एहतराम करते हैं, हर किसी को एहतराम करते हैं। जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें भी सलाम करते हैं।
1: No, I want the house.
2: Can we just be rational?
0: जो हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें भी सलाम करते हैं। वह पलकते, वह पलक झपकते गुजर जाता है, वह पलक झपकते गुजर जाता है, हम जब उनसे कलाम करते हैं। उनका अंदाज ऐसा जानलेवा है, उनका अंदाज ऐसा जानलेवा है, वो एक नजर से गुलाम करते हैं। अभी तक उनका दिल ना जीत सके, अभी तक उनका दिल ना जीत सके, हर रोज एक खत उनका नाम करते हैं। चलो आपको लेकर चलते हैं, फिर से एक सुंदर सा गीत है, चलो मिलकर और श्रवण करें।

लवारिस, फिल्म लवारिस से ये सुंदर सा गीत निकाल दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों। और ये गीत खुद अमिताभ बच्चन ने अपने आवाज से हमको सुनाई है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कहते हैं फूल खुशबू, फूल खुशबू और चमन की बात करो, फूल खुशबू और चमन की बात करो, कुछ प्यार की, कुछ प्यार की मोहब्बत अमन की बात करो। रोज करते हो तुम बातें, रोज करते हो तुम बातें इधर उधर की, आज मिले, आज मिलकर हाले दिल की बात करो, आज मिलकर हाले दिल की बात करो। चलते चलते कदम कहाँ तलक ले जाएगा, चलते चलते कदम कहाँ तलक ले जाए, एक पग चिन्हो आज प्यार की बात करो। सदियों से छुपी है कसक इन आँखों में, सदियों से छुपी है कसक इन आँखों में, आज आँखों में छुपे आंसू की बात करो। बहुत फासले लिए है अब तक, बहुत बहुत फासले बढ़ा लिया है अब तक, ऐ सनम अब हम दोनों एक मिलन की बात करें।

0: हाँ हाँ लैला मैं लैला।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी
0: फिल्म का नाम कुर्बानी, जाने पहचाने फिल्म और ये नाम भी ना कुर्बानी फिल्म का नाम। तेरी याद हर लम्हा हम उन्हें याद करते रहे, हर लम्हा हम उन्हें याद करते रहे, उनकी याद में मर मर के जीते रहे, उनकी याद में मर मर के जीते रहे, अश्क आँखों से हमारे बहते रहे, हम अश्कों के जाम पीते रहे, मोहब्बत रुसवा हुई जमाने में, मोहब्बत रुसवा हुई जमाने में, हम बस उनके नाम लेकर ही जीते रहे। लब लब खामोश थे आँखों ने हाले दिल कहा, हम बस उनके नाम लेकर, हम बस उनके नाम लेकर ही जीते रहे। तेरी याद
1: .com से।

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से ये सुंदर सा गीत आपके लिए निकाल दिया गया है किशोर दाजी की आवाज में। उनको मेरी मोहब्बत प्यारी लगी है, उनको मेरी मोहब्बत प्यारी लगी है, दुनिया को मेरी कलम प्यारी लगी है। हमने क्या लिखा है खुदा जाने, दुनिया को मेरे लिखा, दुनिया को मेरे लिखी हर बात प्यारी।

सुंदर सा ये सुंदर सा नगमा आपके लिए पेश किया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण जी की आवाज सुनिए और फिल्म का नाम हम आपसे बता दे, फिल्म का नाम साथी। साथी फिल्म से निकाल दिया गया है आपके लिए उदित नारायण और देखे तो कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में यहाँ से हमने श्रवण कर ली है। लाइव प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जाता है। 2005 में ये सुंदर सा गीत पिक्चराइज किया गया है।

अवश्य अवश्य गा लो, मुस्कुरा लो मेरे प्यारे सुनने वालों, और महफिल महफिल अवश्य सजा लो। कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। सफलता की सीढ़ी पर पहला कदम कठिन होता है, लेकिन वही आपको ऊंचाई तक ले जाता है। द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर, द एस्ट स्टेप ऑफ द लैडर फ्रॉम सक्सेस इज मूवी लक, मार दिस सेल ऑफ द स्टेप ब्रेंग, ब्रेंग ये नार द ग्रोथ होगता।

और रखिया। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का नाम। हाँ हाँ और क्या और क्या, अलका याग्निक जी और देखे तो अभिजीत अभिजीत भट्टाचार्य ने सुना दी ये सुंदर सा गीत जो आपके लिए चुनकर और लाई हूँ सुनाने के लिए प्लेलिस्ट पर। तो बहुत से ऐसे हसीन मधुर गीत आपके लिए सिलेक्ट करके लाई हूँ। हाँ ये सब गीत तो पहले से तैयारियां करना पड़ता है और काम भी आसान हो जाता है। कहते हैं कि मोती फेयर एंड द बोस कप ऑफर सक्सेस, डोर सेटिंग्स फॉर मोहन, डोर सेटिंग्स फॉर मोहन, सक्सेस वर्ड बहाल डोर दगेने दी सेल्फ इन मोइलेके टाइडन नीट ओपगेवन। Herkent u zelf daarin? Obstakels als kansen, hindernissen zijn geen reden om te stoppen. No. Hindernissen zijn geen reden om te stoppen, maar een teken om vooruit te gaan. Stille inspanning, werkt in stilte hard. Jouw succes zal vanzelf geluid maken.

उदित नारायण जी की आवाज में, चेहरा तुम्हारा दिल में जिस दिन से उतर गया, हाँ तो ख्याल ही ख्याल आपका आता है, और क्या करे ये

आना जिंदगी जिंदगी मेरे घर आना। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के आवाज में यहाँ से हमने श्रवण की है। हमें नहीं आता अपने दर्द का दिखावा करना, हमें नहीं आता अपना दर्द का दिखावा करना, बस अकेले रोते हैं और फिर से सो जाते हैं।

वाह, दिल छू जाने वाले ये सुंदर सा गीत रफी जी के आवाज में आपके लिए पेश किया गया है आप ही का फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम आप अवश्य जानना चाहते होंगे। फिल्म का नाम शोला और शबनम। धर्मेंद्र जी इसमें अपना कार्यकाल कलाकार इसमें दिखाई है। The handsome guy, Thurman.

ये भी कहा है कि जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी है, जिंदगी ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं रह सकते। जिंदगी में आप कितने बार हार, जिंदगी में आप कितने बार हारे या कोई, ये कोई मायने नहीं रखता। जिंदगी में आप कितने बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आप कितने बार हारे हुए ये मायने नहीं रखता। Het maakt niet uit hoe vaak je in het leven verliest. Want je bent geboren om te winnen. Ja, je bent gewoon geboren om te winnen.

जगजीत सिंह जी को प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। जगजीत सिंह की ये जो जिंदगी है, हाँ हाँ, अब ये जिंदगी जो है इसे हमको डील करना चाहिए, इसे इन्हीं में हम सफ़र करना चाहिए, क्योंकि ये वस्त्र नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, ये वस्त्र नहीं है कि आज उतार दो कल पहन लो, नो नो। कपड़ा हम पल भर में बदल लेते हैं, बल्कि ये शरीर इसे हमें लापुकर करके फिर आगे बढ़ना है। यानी कि लापुकरना इसका मतलब ये है, अगर शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स है, स्पेशलिस्ट है, जो शरीर को चंगा बनाने में हाँ पढ़े हुए हैं। तो शरीर को अच्छा करके हम आगे बढ़ते ही जाते हैं। तो ये जो जिंदगी है इसे हमें दोनों हाथ से और हर एक पल हंस कर और बिताना चाहिए। क्या समझे ओ दोस्त, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती, जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देते उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। गलत तो नहीं थे हम पर खुद को

यादों का कितना हसीन एहसास है, तेरी यादों का कितना हसीन एहसास है, लगता है जैसे तू हर वक्त मेरे पास है।

आकृति मेहरा और अनूप जलोता, अनूप जलोता ये दोनों ये सुंदर सा भजन हमको सुना दी है प्रोग्राम में हमने यहाँ शामिल।

ऐसा प्यार हुआ तो भी ऐसा इंसान से हुआ जिसे मिलना बस में नहीं और पाना किस्मत में नहीं। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, जो लोग दिल में होते हैं वो लोग किस्मत में नहीं होते। जो हाथ में ना हो उसे मन से भी आज़ाद कर देना चाहिए। आपके लिए मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में।

0: रफ़ी जी की आवाज़ में। फिल्म का नाम प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जिंदगी क्या है। वाह वाह, सुनने के काबिल, सुनने के लायक आपके लिए यहाँ से और पेश किया गया है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। मेरे प्यारे सुनने वालों,
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9735232747। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl।

फ्रॉम द मूवी क्रिश हमने पेश किए हैं। आपको सुनाने वाले थे सुन निगम और श्रेया घोषाल जी। एक बहुत सुंदर गीत चुनकर रखे हैं हम आप सभी के वास्ते, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप सुनेंगे, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी।

अभी आप सुन रहे थे थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। और फ्रॉम द मूवी मैंने दिल तुझको दिया, अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। घर से निकलते ही कुछ देर चलते ही रास्ते में है उसका घर। फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं आप सुनेंगे, उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, और म्यूजिक दिए हैं राजेश रोशन जी। अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। और ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है कि बुरे लोगों की यानी बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश करने से बेहतर है बुरे लोगों की बुराई को भूलकर उनमें अच्छाई तलाश की जाए। तो चलिए ये गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

सोनू निगम और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी जीत से हमने पेश किए हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है, हमेशा खुश रहा करो, हमेशा खुश रहा करो, ये सोच करके दुनिया में हमसे भी ज़्यादा परेशान लोग और भी हैं। कुमार सानू आपको सुनाने वाले हैं चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। फ्रॉम द मूवी सलामी से हम पेश करते हैं कुमार सानू और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना, आशा भोसले जी के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी सलामी से हमने पेश किए हैं, हंसाते हो रुलाते हो। फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, ज़िंदगी को ज़रूरत की तरफ ले जाओ, ख्वाहिश की तरफ नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी होती है और ख्वाहिश तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ये तेरा घर ये मेरा घर, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती है, एक तो रास्ते की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभलने वाले हाथ किसके हैं ये भी पता चलता है। आज पहली बार दिल की बात की है। फ्रॉम द मूवी तेरी बार से आप सुनेंगे कुमार शानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं।

का याग्निक और कुमार शानू भी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तरी पार से अभी आपने सुने हैं। हम तुम्हारे हैं तुम्हारी सनम।

0: भैया।
1: हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से हमारा रिश्ता है, आज भी हमेशा की तरह भी। और आज हम सॉन्ग्स चलाएंगे जो आप लोग के पसंद है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ, राम राम, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सार्ज, जो अब से लेकर 3 बजे तक आपके साथ रहूँगा, जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, हमारा प्यार भरा मोहब्बत पहुँचे, ढेर सारा पैगाम पहुँचे। लोग जो इस वक्त रास्ते पे ही बच के रास्ते पे रहना, जो अपना नौकरी पे बच के अपना नौकरी को करना, जहाँ पे दुख है और जहाँ पे सुख है, हमारा पूरा टीम फोन हिंदुस्तान रेडियो हर एक दुख में हर एक सुख में आप लोग के साथ है। और ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, हमारा प्रोग्राम आज रहेगा 3 बजे तक, अब से लेकर 3 बजे तक। आप जानते हैं हमारा सवाल और जवाब का प्रोग्राम है, आज फ्राइडे है। मैं अभी सवाल करूंगा, तब तक के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सजा करके प्रोग्राम को लाया हूँ, कुछ नए अंदाज में भी हम आप लोग के गाने को सुनाएंगे। और कुछ आज वीकेंड थे और बढ़िया मौसम दिखा रहा है, तब हम सोचते हैं हम कुछ नाचने वाला गाना भी आप लोग के सुनाएंगे, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे तक तो लोग खाते हैं और घर पे खाने का वक्त, ज़रूर कुछ नाचने वाला गाना हम आप लोग के सुनाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं दोस्तों, ये जो सवाल मैंने किया था, 1 बजे से 3 बजे तक हम चलाएंगे सवाल और जवाब। जो इस जवाब को देगा, सवाल का जवाब को मुझे सही जवाब देगा, हक बनते ही एक गाने को मांगने के लिए। हर एक जो सही जवाब देगा, आप एक गाने को मांग सकते हैं। वादा करके वादा निभाना हम जानते हैं, हम ज़रूर आपके गाना पूरा करेंगे। तो आप जान चुके हैं, 1 बजे से 3 बजे तक हमारा सवाल और जवाब चलेगा। अगर आप सवाल पे सही जवाब को देगी तो आप गाने को मांग सकता है। सवाल मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा, हमारा हाथ में कुछ है, आप उस तरफ है, हम इस तरफ है, हम इस तरफ से सही देखते हैं मगर आप उस तरफ से कुछ और देखते हैं, क्या है अगर आप जानते ही तो मुझे ऐप कीजिए। मेरा तार का नंबर है 0608 3 3 3। एक बार मैं फिर से दोहराता हूँ, 0608 3 3 3। तब तक हम चलेंगे, जैसे प्रोग्राम को मैंने बनाया है, कुछ नए गाना है, कुछ 2 साल हो चुका है इस गाने को, कुमार शानू और अलका याग्निक का एक बहुत ही अच्छा गाना है, हम नवा हम सफ़र। हम चलते हैं दोस्तों, और अभी आप हमारा कोलेखा फियंती को जुड़ रहे थे।
2: आओ भीग चले फिर से।

जादू व्याप्त हो रहे थे अल कायग्नि और कुमार शानू की आवाज हम नवा हम सफर हमरे चलते हैं घड़ी की तरफ देखा जाए तो सेस ऊपर एलफ हो चुका है और आज है फ्राइडा 5 सितंबर 2026 में हम चल चुके हैं। कुछ महीने और ही तो 2027 में हम चला जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं कुछ रोमांटिक सॉन्ग से उदित नारायण की आवाज़।

0: मेरी हमरथ, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश न होती तो भी ना आती।

जी हाँ, आखिर तुम्हें आना ही जरा देर लगेगी। उदित नारायण की आवाज अभी आप सुन रहे थे। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही कुमार शानू की तरफ।

कुमार शानू अल का यज्ञ की आवाज अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। देखा जाए मौसम तो बहुत बढ़िया मौसम, और आप जानते हैं ये प्रोग्राम हम दनाक शहर से करते हैं, जहाँ पर सरसराहट हवा चल रहा है, पानी बह रहा है, गंगा नदियाँ बह रहा है, हमारा बोट यहाँ लगा है और वहाँ पे खाना को पक रहा है, खाना पक रहा है। आज फ्राइडे के वीकेंड हम चल चुके हैं, वीकेंड हो चुका है, काफ़ी चीज़ है लोगों को करने के लिए, कहीं पे न्योता है, कहीं पे भतवान है, कहीं पे फरियारी है, हर एक चीज़ बच के करना। और ये दिन जो है वीकेंड आ चुका है, बस खुशी में रहना और खुशी से ये दिन को बिताना चाहिए। तब तक के लिए हम चलते हैं उदित नारायण की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, मेरा दिल तुम पे फिदा है, तू एक दिल रुबा है। अभी सो रहे थे उदित नारायण की आवाज। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोग के लिए चलते हैं अनुरीता कांजियाल और पवनदीप की आवाज हम आप लोग को सुनाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे अनु रीता कंजियाल और पवनदीप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते ही आप सब जानते हैं फायदा हो चुका है, वीकेंड हो चुका है, घड़ी की तरफ देखा जाए तब इन हालफ तालफ हो चुका है, टाइम तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हमारा तुम्हारा साथ रहेगी 3 बजे तक। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही एक बार फिर से उदित नारायण की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, सर के चुनरिया जरा जरा वो रोमांटिक सॉन्ग से आज फ्रेडा के, चलो हम रोमांटिक सॉन्ग चलाते हैं और हम चलते हैं कुछ कुछ होता है। देखा जाए जो इस गाने को गाया है वो है अनुराधा घोष। चलो सुनते हैं कुछ कुछ होता है।

क्या कर रहा है, कुछ कुछ होता है। म्यूजिक श्रद्धांजलि और गाने गाने वाली है अनुराधा गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही एक बार फिर से वो सवाल और जवाब की तरफ। एक बार फिर से मैं सवाल को दोहराना चाहता हूँ, कुछ है मेरे हाथ पे, हम सब देखते हैं, आप उस तरफ है, हम इस तरफ है, मेरे हाथ पे कुछ है, मेरी तरफ से तो सही दिखता है जो मैंने रखा है, लेकिन आपकी तरफ से सही नहीं है। क्या है ऐसा, कौन सा चीज है कि जो हो सकता है, ये हो सकता है मुखलक है, मुमकिन है कि हम कुछ और देखते हैं, आप कुछ और देखते हैं। अगर आपको इस जवाब मालूम है, मुझे ऐप की जियो फिर धीरी ए नलेन धीरी धीरी ट्वी। तब तक के लिए हम एक बार फिर से ले चलते हैं उदित नारायण की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, इतना मैं चाहूँ तुझे जो किसी ने नहीं चाहा है। ऐसा होता है इस दुनिया में और हर एक प्यार में ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, हम आप लोग को ले चलते हैं। सॉन्ग्स दीवाना है ये मन मूवी है, चोरी चोरी छुपके छुपके 2001 का है। कायब ने सोनू निगम का आवाज़ है, लाइरिक से जमीर।

जी हाँ दोस्तों, दिल तेरा मेरा दिल झूमे रे झूमे, अभी आप झूम रहे थे सुन निगम और का यज्ञ की आवाज।

0: Burgers vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-365-2247 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
3: Ja, dus dat was iets nieuws en iets reclame die we hier hoorden. Ja, dus als je naar de kant kijkt, dan is 5 voor 12 uur geworden. 3 uur zal je met ons zijn. Laten we 12 uur चलते गाना सुनाते हैं चलते हुए गाड़ी वाला गाना जैसे चलते चलते आप हिल भी सकते डोल भी सकते बैठे बैठे हिल सकते डोल सकते घर पे हो खाने को पका रहे वीकेंड थे तो तनी हिल सकते डोल सकते हैं और आप जानते हैं डांस का दूसरा नाम है चुनमुन चलो देखते हैं इसको और अकृता इसका जो गाना गाया है अकृति करकर और शहीद मालिनी और शंकर एहसान लुल के लुली के म्यूजिक है अमिताभ तखारिया इसका जो लाइरिक्स है दोस्तों चलो हम सुनते हैं कुछ ऐसे गाने हैं जो हम आप लोग के सजा करके लाए और सुनाने वाले हूँ हम सब मिलकर सुनेंगे क्योंकि प्रोग्राम काफ़ी दूर दूर से लोग सुनते हैं यहाँ से तम सुरीनाम से तम जर्मन से तम स्पाइन तक लोग इस प्रोग्राम को सुनते ही यहाँ से इंडिया भी लोग सुनते हैं अभी सभी को फरमाइश से हम सुनाएंगे अगर सही जवाब है तो हम फरमाइश ज़रूर करेंगे हक बनते हैं गाने मांगने के लिए एक बार फिर से मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूँ मेरे हाथ पे कुछ है उस तरफ आप है इस तरफ हम हैं मुझे और कुछ दिखता है तुम्हें और कुछ दिखता है क्या है अगर आप जानते हैं तो मुझे ऐप कीजिए 06-4-8-9-8-3-3-2
4: But

जी हाँ दोस्त, तो इसकी उसकी और ले मार विस्की वीकेंड हो चुका है। जय ब्लैक पूछो, जय रेड पूछो, लेकिन विस्की ही तो इसकी उसकी और मार विस्की। चलो तो हम दो गाने नॉन स्टॉप आपको सुनाते हैं। डांस नंबर है, सॉन्ग से थे 2026 का बॉलीवुड के डांस से दम से हिट गाने ही जो हम लोग को सुनाते हैं। तब तक के दो हम नौ सब सुनाएंगे, दो तीन गाने। हम भी कुछ कॉफ़ी पी लेते हैं ना, स्टूडियो में खाना है, पक रहा है, निफो पे खाना पक रहा है। हम सोचे आज डोसा है और रोटी पक रहा है यहाँ पे लव बोट में। अगर आपको खाना आना पिए मई कमलांग दिनाक्षर से हम प्रोग्राम को करते हैं और आप सब चुन है द एवरग्रीन लव द लव फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे ढोल बाजे, ढोल नहीं बजेगा तो और क्या बजेगा। हम आप लोग के लिए चलते हैं द बेस्ट फ्रॉम पार्टी डांस, डीजे नाइट बिग म्यूजिक के हम तरफ ले चलते हैं डीजे नाइट।

0: जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, द बेस्ट फ्रॉम पार्टी डांस डीजे नाइट बिग म्यूजिक। ठीक है, हम चलते हैं घरारा वुल। ये जवानी है दीवाना प्रीतम और मधुरी दीक्षक रणबीर कपूर, देखा जाए देखा जाए देखा जाए अमिताभ भट्टाचार्य, इसका जो लाइरिक्स है प्रीतम का म्यूजिक है और हम सुनेंगे और सुनाएंगे भी।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिकाए हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है निकलो भाई, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: बरखुरदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क

या जी हाँ जी हाँ जी हाँ, दिल्ली भागरा यानी कि सूरीनाम गयाना ती दा जिस यहाँ देखा जाए यही जवानी है दीवाना प्रीतम माधुरी दीक्षित और रणबीर कपूर। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे। मैंने कहा था ना द बेस्ट फ्रॉम पार्टी डांस डीजे नाइट वेंडिंग और पिक म्यूजिक द लवर्स डांस पार्टी हम आपको सुनाने वाले हैं। पूरा डांस कर सकते हैं घर पे भी, जहां भी है इस प्रोग्राम को सुनते हैं आप भी डांस कर सकते हैं।

जी हाँ दोस्तों, इसमें इस गाने में कुछ गड़बड़ी है और हम इस गाने को फिर से यहाँ पे खोज के रखूँगा। तब तक के लिए हम कुछ दूसरे गाने आप लोग के सुनाने वाला हूँ। देखा जाए कुछ यूट्यूब के प्रॉब्लम है और हम आप लोग के इस गाने पे ले चलते हैं। देखा जाए यहाँ कुछ गाने हैं जो हम आप लोग के सुनाने वाले हैं। देखा जाए ठीक है या नहीं।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कुछ ऐसा ही नगमा हम भी सुनाते हैं, ऐसा गाना हम सुनाते भी, और क्योंकि आप सब चुन है देफ अगेन लव फाउन हिंदुस्तानी रीतियों से, चलो आप लोग सुनाते फिर से कुछ भड़कते नगमा। अभी आधा घंटा और बचा है, उसके बाद सवाल और जवाब होगी। अगर आप जवाब जानते हैं तो मुझे ऐप कर सके, काफ़ी ऐप आ चुका है, काफ़ी सही जवाब है, काफ़ी गलत जवाब है, हम गाना सिर्फ सुनाते हैं सही जवाब पे। अगर आप सही जवाब देंगे हक बनते हैं गाना मांगने के लिए। सवाल एक बार फिर से मैं ही पूछता हूँ, हमारा हाथ पे कुछ है जो आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से हमार कंती से कुछ और दिखता है, आपके तरफ से कुछ और दिखता है, क्या है जानते हो तो मुझे ऐप कीजिए 9 6 4 3 8 9 3 3 3 3

जी हाँ दोस्तों, बस तेरा नाम, बस तेरा नाम दोस्तों। और आप सब चुने एफ अगेन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से प्रोग्राम को करते हैं और हम ले चलते हैं द बॉलीवुड पार्टी इट्स जुगल बॉक्स से, डांस सॉन्ग से दोस्तों। और हम सुनेंगे और सुनाएंगे भी

ज्यादा सब यहाँ सुन रहे थे डांस डांस फुल डांस नंबर आप सुन रहे थे, और हम आगे चलते ही क्योंकि वक्त से हम जुड़े हैं दोस्तों, कम वक्त है अभी हम प्रोग्राम को चलाएंगे, सवाल और जवाब तक कम पड़ जाएंगे वक्त।

जी हाँ दोस्तों, दिल की मोहब्बत तो बन गई है बेस्ट बॉलीवुड फेस्टिवल रीमेक्स 2026 का है और हम चलाएंगे इसे ही, देखा जाए 24 24 एन हो चुका है।

0: जादूस्त भी आप सो रहे थे, कुछ दंस नखना भी आप सो रहे थे। जादूस्तों हम चलते ही न्यूज और कुछ बयान की तरफ, रिकलामा की तरफ। उससे पहले हम सवाल को एक बार फिर से पूछता हूँ, हाय कोई जो लोग हैं जो अब से रेडियो को सुनता है, सवाल को नहीं सुना है, एक बार फिर से मैं इस सवाल को दोहरा रहा हूँ। हमारा हाथ पे कुछ है, मैं हाथ खोल के कुछ रखा हूँ, आप उस तरफ है, हम इस तरफ है, मेरी तरफ से और कुछ कुछ दिखता है और कुछ दिखता है, आपके तरफ से और कुछ दिखता है। एक चीज है जो दो कंती से दो चीज दिखता है, क्या है? हमारे हाथ पे बा हमारे कंती से हमें देखा मोई जोन हम रख लिए, मतोर कंती से दूसर चीज देखा है वह भी ठीक है, कौन ची बा वत इसत एन क्या है? अगर आप सही सवाल पे सही जवाब को देंगे तो गाने को मांग सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं न्यूज और रखलाम की तरफ, उसके बाद हम आ रहा है, आज जुमा है, हम दो जुमे का गाना जरूर सुनाएंगे और हर एक को जुमा मुबारक हो।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling Sales.

कहते हैं चलो मोमिनो नमाज को पढ़िए, दुआ को मांगिए और ये दुआ में यही मांगिए, हे अल्लाह पाक, हे अल्लाह ताला, इस दुनिया के हर एक दुख को दूर कर दिया जाए। आप कर सकते हैं, ज़रूर करिए। अल्लाह ताला इतना ताकत आप में ही कि जो भी जुमा की नमाज पढ़ाए हर एक नमाजी यही मांग किया है, तंदुरुस्ती दे, दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, एक और है, नात है, हम उसे भी सुनाते हैं, उसके बाद हम चलेंगे सवाल और जवाब। काफ़ी जवाब आ चुका है, सही जवाब है, काफ़ी सही जवाब है।

जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, अभी आप सो रहे थे। ये जुमा का है, हर एक जुमा मुबारक हो। मैंने कहा कि दो गीत मैं जुमा को सुनाऊंगा, हर एक जो जुमा कर चुका है हर एक को जुमा मुबारक हो। हम चलेंगे, तब तक हम चलेंगे सवाल और जवाब करेंगे, सवाल और जवाब हम करेंगे। और देखा जाए जर्मन से जहां से ममता प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं, और सवाल पे सही जवाब को दिया है। और मेरा सवाल था, हमारे हाथ पे कुछ है, आप उस तरफ है, हम इस तरफ है, हमने कुछ रखा अपने हाथ पे, हमार जो हम रख ली वो मोई देखा है, जो तू देखे वह मोई देखे, हम दूसरा चीज देखे लो, तू दूसरा चीज देखे, मैं कुछ और देखता हूँ, आप कुछ और देखते हैं। और सही जवाब को दिया है ममता ने, जी हाँ, हमारा हाथ पे 9 नंबर लिखा था, वो नहीं था, हमारे तरफ से 9 था और आपके तरफ से 6 था, यही ममता ने कहा, सही जवाब को दिया है। यही सवाल था, हमारे तरफ से नहीं कहे, आपके तरफ से 6 है। ठीक है दोस्तों, और मांग क्या है, गुम है किसी की प्यार में, लता मंगेशकर किशोर कुमार। और देखा जाए मूवी है रामपुरी का, लक्ष्मण नहीं करती ट्वेन से बंद का है, रणधीर कपूर रेखा इसमें काम किया है, और लाइक से मनोज मजदूर सुल्तानपुरी का एयर दे फिल्म का म्यूजिक है दोस्तों।

जय दोस्तों, जर्मन से जहां से नॉइस से जहां ममता प्रोग्राम को सुनते हैं और लाइक करते ही सदा प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है नंबर नेहा। हमारे हाथ पे थे, हम नौ देखते थे और आप अपने तरफ से छाव देखते थे। नौ है नेहा है, अमिताभ बच्चन जाने पूछा था ये कौन सा नंबर है चप्पल, नंबर नौ है। ठीक है ममता, प्रोग्राम को सुनते हैं, पसंद करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मन को मुझे सलाम कर देना, गुदंदाक और हर एक को सलाम कर देना, दुआ दुआ सलाम तो सदा मांगेंगे। अभी आप सुन रहे थे गुम है किसी के प्यार में, लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ दोस्तों। ठीक है हम चलते हैं ईदन, ईदन से जहां से शकुंतला हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया भी नेह नौ नौ नौ। ठीक है सही जवाब को दिया है और एकदम ईदन से प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं हमारा रेडियो फाहन को और मांग किया है दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, दिल करने लगा है प्यार तुम्हें मूवी नतीजा नई खंड नई खन शस्त्र का है। पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी और हेमलता की आवाज़ जहां पे उषा खन्ना म्यूजिक को बजाया है, आज़ाद ने लिरिक्स को लिखा है। चलो शकुंतला जी हम आपका गाना आपके सुना रहे हो।

जहाँ जस्त दिल करने लगा है प्यार तुम्हें, पन्ना श्री मोहम्मद रफी और हिमराज के गाना भी आप सुन रहे थे दोस्तों। ठीक है, एकदम से ईदन चला गया जहाँ से मफरव शकुंतला प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत बहुत पसंद करते हैं हमारा चैनल को, रेडियो को, फाउन हिंदुस्तानी को बहुत ही लाइक करते हैं, हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा सही जवाब को देते हैं और सही गानों को मांग किया भी आपने। बहुत खुश है, बहुत खुश हुए हैं कि आप लोग प्रोग्राम को सुनते हैं, ऐसे ही सुनते रहना और लाइक करते रहना। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं सूरीनाम की तरफ। वेलखा दाख जी गुलाम नबी वैख से मुफरो गीता का श्रीराम जो प्रोग्राम को सुनते, बाल को बनाते हैं, बाल ठीक करते हैं, कॉलर मिलाते हैं और अपने नौकरी इस वक्त अपना घर में उसे एक कप सलोन है जहाँ से वो काम करते हैं, प्रोग्राम को सुनते हैं और वो भी सही जवाब को दिया है और मांग भी किया है, बहुत ही खूबसूरत नगमा मांग किया है, बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। कुमार शानू अलका यज्ञ की आवाज़ है दोस्तों और देखा जाए कविता कृष्णा मूर्ति भी साथ दिया है, इसका म्यूजिक है नदीम शरवन और देखा जाए लाइरिक से जमीर गीता काशीराम। आपने सही जवाब को दिया है, सही गाने को मांग किया है और मैं गाना आपके पास पहुंचा रहा हूं आपके कानों तक।

जी हाँ बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, कुमार शानू, अलका याग्निक और देखा जाए संग्राम मूवी संग्राम नहीं कहती त्रिया नहीं कहता का है जो वैखदा से ही गुलाम नबी वैख से मफरो कासी राम प्रोग्राम को सुनते हैं लाइक करते हैं सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है और गाने मैंने आप तक पहुंचा दिया ना किता कासी राम ठीक है अनफैन अदाख और कुछ है और है तो मुझे ऐप पे लिख सकते हैं क्योंकि ऐप द्वारा हम सब प्रोग्राम को चलाते हैं। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं सूरीनाम की तरफ जनाक शहर से हमारा भाई जो अमृत मोहन है इस वक्त सूरीनाम में फकांसी से गया है वो भी सही जवाब को दिया है प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग किया है मूवी संगाई और इसका गायिका है आशा भोसले पद्मसी मोहम्मद रफी इसका लाइरिक जो है राजेंद्र कृष्णा का है और म्यूजिक है रफी शंकर शर्मा रवि और सही जवाब को दिया है अमृत भाई सूरीनाम में कैसा है मौसम कैसा है आपने कहाँ लिखा बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है सच में बहुत गर्मी है यहाँ जाइए तो हमें बहुत गर्मी लगेगा और काफ़ी दिन अभी गर्मी लगेगा। ठीक है पेड़ के नीचे बैठना नारियल को खाना पीना और ऐसे ऐसे हर एक चीज़ पेड़ के नीचे बैठ जाना झलवा बांध के बैठ जाना थोड़ा गर्मी से दूर रहना मौसम ही कुछ ऐसा है सूरीनाम का यार। लेकिन ठीक है अमृत मोहन सूरीनाम में इस वक्त फ्रांसिस है और गाने को मांग क्या है चलो मिल के सुनते हैं क्या आवाज़ है क्या आवाज़ में इस गाने को गाया गया है।

जी दोस्तों, ना ये जमीन थी ना आसमां था, असा बसले पद्म से मोहम्मद रफी की आवाज से दोस्तों, और मांग किया गया था अमृत मोहन जी इस वक्त सुरीनाम में प्रोग्राम को सुनते हैं हमेशा की तरह, जैसे यहाँ पे सुनते थे इस वक्त वो फकांसी से सुरीनाम में, और काफ़ी हलचल मचा रखा है उसके साथ, गर्मी ने काफ़ी हलचल मचा रखा है भाई अमृत। ठीक है, फेनरेस और मोई से घूम के आइए भाई, जैसे गया है वैसे वापस ही आना, ये था अमृत मोहन। चलो दोस्तों, सुरीनाम से सुरीता बुधाई प्रोग्राम को सुनते हैं, तिल्ली फोक कनाल से प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है नंबर 9 9 9 9 9, नहीं खा इस तरफ उस तरफ 6, थोड़ा से फर्ज के लिए। ठीक है, मांग किया है देखा जाए मूवी दुल्हा दुल्हन सिंगर लता मंगेशकर और मुकेश, म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी, अल्लाह दिक से अरुण। चलो हम सुनते हैं जुमे की रात हो या दिन।

0: माफ करना पड़े भैया, देखा नहीं मेरा क्या कसूर है, वो है ना वो देखिए।
1: समझ गया समझ गया, आज जुमे का रोज है, इंशाल्लाह जोड़ी सलामत रहे।
0: जी जुमे का दिन?
1: हाँ।
0: यानी कि मैं और वो? शुक्रिया बढ़िया, सुना तुमने, जुमा जुमा।

जहाँ दोस्तों तितली फोक डांस से सुनीता बुधाईपुर का हमको सुनते ही और पसंद करते सही जवाब पे सही जब सही सवाल पे सही जवाब को दिया है नीक और मांग क्या था मूवी दूल्हा दुल्हन लता मंगेशकर मुकेश के वास अभी आप सुन रहे थे और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी और अरुण के हाथ और हाथ के सफाई जो लाइव इसको लिखा है। ठीक है सुनीता जी प्रोग्राम हमने आपके तक पहुँचा दिया गाने भी आप तक पहुँचा दिया जुमे की रात हो या दिन। ठीक है दोस्तों हम चलते हैं सुरीनाम पस क्रोनिंगन से शर्मा का पस क्रोनिंगन से हमेशा की तरह सीता जी आज भी प्रोग्राम को सुनते हैं कल अनिल प्रोग्राम हम वेट करते हैं शुक्रवार के और सही जवाब को दिया है 6 बोला था लेकिन 9 है। ठीक है आप वहीं पे थे 6 के 9 9 को 6 9 के 6 बना दिया 6 के 9 बना दिया वही तो मेरा सवाल थे इधर से दिखा रहा है 9 उधर से 6। ठीक है और मांग किया है देखा जाए मूवी हम सब उस्ताद थे अजनबी तुम जाने पहचाने से लगती हो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और आजाद का लाइरिक से। ठीक है सीता जी प्रोग्राम बन चुका है आप तक आपके घर तक हम पहुँचाता हूँ आपके कानों तक

जय दोस्तों, सलमा का पस खुरो निन से जहां से सीता जी प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा की तरह आज भी सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया था, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हो सीता जी के, आप प्रोग्राम को सुनते हैं और हमेशा पसंद करते हैं, आप वेट करते हैं, वक्त ही करे है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं रेडियो पे, सभी को एक फाइनल वीकेंड बोलता हूँ। वीकेंड आ चुका है और जैसे सवाल पे आप लोगों ने जवाब को दिया है, आपको हक बनता है, जो भी गाना मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। देखा जाए दिनहाँ शहर से कॉर्नहेड से भाई रॉय देवराज प्रोग्राम को सुनते ही और एक गाने को मांग किया है, हम जरूर उसका अरमान पूरा करेंगे और हम चलाएंगे मूवी संगम के निगेदिन वीरन सस्तक के और लता मंगेशकर मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज है, म्यूजिक है शंकर जय किशन का और लिरिक्स साथ कलम और सिहाई जो चला गया है वो और कोई नहीं है शैजेंद्र है, भाई रॉय देवराज काफी बहुत ही बढ़िया म्यूजिकांत है, ढोल है, तबला, कौन ची है जो बजाना नहीं जानते हैं। और हमारा जॉनी भाई के साथ म्यूजिक करता है, हक बनता है गाने मांगने के लिए और वो प्रोग्राम को सुनते ही बहुत पसंद करते हैं पाहुन को। भाई रॉय, देख आपका गाना यार देवराज।

जी हाँ दोस्तों, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। राज कपूर, फियंती माला, रिंद्र कुमार और लता मंगेशकर और मुकेश और मेहंदा कपूर की आवाज़ थे। म्यूजिक शंकर जयकिशन और लाइरिक्स थे शैलेंद्र।

0: En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
3: जी हाँ दोस्तों, हम चलते ही सवाल और जवाब के काफ़ी लोग हैं जो अभी गाने को अपना वेट करते, अपने फरमाइश जो सही जवाब को दिया है, अपने गाने को वेट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं ऐप पे, हम देखते हैं शांदरा जो दनाशर वतरिंगसफेल्ड से सही जवाब को दिया है, कहते हैं नेख। ठीक है, नौ है और मांग किया है ओ सजना और देखा जाए मूफी है अब ही नतरी। नेख ने सही बनता कहा है संग्रह से लता मंगेशकर, लायरिक से मजरूत सुल्तानपुरी और म्यूजिक है लक्ष्मीकंद प्यारेलाल। सांदा जी, आपका गाना आ रहा है, सही जवाब पे सही गाने को मांगा है और अच्छे गाने को मांग क्या है। इसमें काम किया शशि कपूर, हेमा मालिनी ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, ओ सजना मूवी अब हिन्नतरी नहीं कहती सही बंद के लता मंगेशकर की आवाज और चला गया दना शहर में जहां से संध्या जी प्रोग्राम को सुनते वातरिंग फेल। सही जवाब को दिया है संध्या जी और सही, बहुत ही बढ़िया गाना, बहुत ही अच्छा गाना आपको मांग किया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोग्राम लेके आगे जाते ही और देखा जाए तार पे फोर्स कोटन से रेमन कोहबीर प्रोग्राम को सुनते हैं और वो भी कहा है नौ नंबर है। अमिताभ बच्चन ने पूछा था चप्पल का नंबर क्या है, नौ है हमारा हाथ पे, नौ है आप उस तरफ से छाओ देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मांग क्या है, तलत महमूद का एक बहुत अच्छा गीत है तस्वीर बनाता हूँ। फोर्स को उधर तरफ जा रहा है जहाँ पे रेमन कोहबीर प्रोग्राम को सुनते ही पसंद भी करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, फोर्स कोटन से रेमंड को हबीरपुर गांव हमको सुनकर मांग किया था, तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती है, और सही जवाब को दिया था, सही गाने को मांगा है हेल मोई नंबर का फरा हेल मोई नंबर, और हम चलेंगे आगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेल रेमंड को हबीर जो प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं फोर्स कोटन की तरफ, जहाँ से शांता सार जो भी प्रोग्राम को सुनते हैं और सही जवाब को दिया है, और बहुत ही पुराना गाना मांगा है, बहुत ही अच्छा गाना मांगा है, लेक नंबर जीवन का दुगरा सपना, और गाने वाला है सीहा आत्मा की आवाज़ हम सुनेंगे, सही जवाब को दिया है और गाने हम आपके आप तक पहुंचाते ही। शांता गोबीर फोर्स कोतन से

बने का अधूरा सपना सेहस आत्मा का चंद्र सिंह आत्मा का ये जो गाना है काफ़ी अच्छे गाना है, काफ़ी अच्छे गीत है। और शांता सर जो फुर्सकोतन में रहता है और मांग किया था, सही जवाब दिया था, सही गाने को मांगा है, बहुत बहुत धन्यवाद हो शांता को। हबी शांता शारजू को हबीर प्रोग्राम को सुनते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं लेवार्दा की तरफ जहां पे राजा राम शरण प्रोग्राम को सुनते ही और लिखा है सेस, बोले छाओ लिखी से हमारा कंतीस नहीं कहे तो कंतीस से सेस बा सही जवाब है, आपके तरफ तो नहीं कहे, नहीं कहा होना चाहिए तब सेस को देख सकते हैं, छाओ को देख सकते हैं। और मांग क्या है, मूवी साहेब और क्या खबर क्या पता, किशोर कुमार की आवाज है, पप्पी लाहिरी की म्यूजिक है, अनजान के लाहिरी से अनिल कपूर अमृता सिंह इसमें काम किया है। चलो लेवार्दा की तरफ ले जाते हैं जहां से राजन प्रोग्राम को सुनते पसंद करते हैं, सही जवाब दिया राजन, सही गाने को मांग किया है और हम आपके कानों तक इस गाने पहुंचाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, क्या खबर, क्या पता, क्या खुशी गम है क्या। किशोर कुमार की आवाज, अनिल कपूर, अमिताभ सिंह इसमें काम किया है, मूवी साहेब। ठीक है दोस्तों, ये चला गया था ले वारदा की तरफ, जहाँ पे राजन रामचरण प्रोग्राम को सुनते हैं, हमेशा सुनते, आज भी सुनते हैं, और इस गाने को मांग किया था। ठीक है दोस्तों, फिर से चलते हैं ले वारदा की तरफ, जहाँ से भैया से गोविंद प्रोग्राम को सुनते ही वो भी सही जवाब को दिया है और मांग किया है मूवी महबूबा के। किशोर कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी का लाइरिक्स से, और हरदीप बर्मन का म्यूजिक है। चलो मिलकर सुनते, क्या गाना है इसमें, रेस करना, हेमा मलिन ने काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सो रहे थे किशोर कुमार की आवाज मेरी नैना सावन भादो और मूवी महबूबा, आनंद बख्शी का लिरिक्स, एरदे बिरमन का म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, चला गया था ले वर्द फ्रिसलान के तरफ, जहां पे भाइयों से गोबिन प्रोग्राम को सुनते ही और सही जवाब को दिया था। ऐसे ही सुनते रहना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ है, हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चलते एक बार फिर से ले वर्द की तरफ, जहां पे रोती एक्सप्रेस यार, और उसका मालिक आनंद जुगोबिन जो वहां पे रोती एक्सप्रेस चलाते हैं। मैंने कई बार कहा है, जब भी वार्ड जाइए बिगर रोटी खाए वापस मत आना, जाइए ढूंढिए खोजिए, खोजने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो रोटी एक्सप्रेस जरूर मिलेगा। और सही जवाब को दिया है नहीं हमारे तरफ से 9 है, उसकी तरफ से 6 है, और हम जो उसकी तरफ से देखेंगे 9 है, उसकी तरफ से 6 है। ठीक है, मांग क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे किशोर कुमार की आवाज है, लिरिक्स आनंद बख्शी, एरदे बिरमन का म्यूजिक है, और मूवी अमर प्रेम निघंटिन सीफन तक का है, रेस खन्ना सर मिला टैगोर, इसमें काम क्या है, चला गया है लेवार्ड फ्रिसलान की तरफ रोती एक्सप्रेस।

जी हाँ दोस्तों, मूवी अमर प्रेम निगम 73 का कुछ तो लोग कहेंगे और चला गया था रोती एक्सप्रेस का मालिक आनंद जुगोबीन, जो सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, और ऐसे प्रोग्राम को सुनते रहना हर हफ्ते। हम बहुत खुश हैं कि आप हमारा प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद भी करते हैं और हमारा साथ देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चला जाते हैं फिर से ऐप देखेंगे। तो अमन अमन जो सूरीनाम से तितली फोकनाल से प्रोग्राम को सुनते हैं और पसंद करते हैं, कहते हैं नौ है और मांग क्या है देखा जाए। फिल्म शराबी, पुराना शराबी है जिसमें किशोर कुमार की आवाज है, पप्पी लहरी की म्यूजिक है, प्रकाश मेहरा का लाइरिक से और गाने का बोल है मंजिले अपनी जगह पे। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह है। तितली फोक नाल से अमन अमन अमन प्रोग्राम को सुनते हैं और बहुत पसंद करते हैं और मांग किया था, सही जवाब को दिया है और सही गाने को मांग किया है। ठीक है अमन जी, ऐसे ही प्रोग्राम को सुनते रहना, सुरीनाम देश से प्रोग्राम को सुनते ही। ठीक है दोस्तों, हम चलते ही आगे जहाँ पे राबिया कमाई माँ है। अस्सलाम वालेकुम माँ, आप भी प्रोग्राम को सुनते हैं, सही जवाब को दिया है और एक गाने को मांग किया है। चलो जद्दी सिंह का एक गाना है जो काफ़ी हलचल मचा रखा है, न्यू स्टाइल पे है, किसी और ने गा दिया लेकिन जद्दी सिंह का लिखा हुआ गाना है।

0: अब आईना पूछता है मुझसे,
1: किसके लिए भागे थे?
0: मैं चुप रहता हूँ,
1: क्योंकि जिनके लिए भागे थे
0: वो अपने रास्ते चले गए।

जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे जति सिंह का लिखा हुआ गाना और मांग क्या था दानाक शहर से माँ, सही जवाब को दिया था और सही गानों को मांग क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ, अस्सलाम वालेकुम। और चलो दोस्तों हम चलते हैं सुतमेर, जहाँ से मीला दीदी प्रोग्राम को सुनते ही और पसंद करते ही सही जवाब को दिया और मांग क्या है लग जा गले। चलो दीदी गाना हम आपके नाम करते हैं और हमारा जो कोलेगा भी रेडियो लेगा वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में आ चुका है राजन द्वारका। हर एक को सलाम कहते हैं, नमस्कार कहते हैं, मीला दीदी को भी द्वारका का सलाम, राजन द्वारका हर एक को सलाम करते हैं, मीला को भी। अभी प्रोग्राम में रहेगा, अभी 3 बजे से हमारा कोलेगा, हमारा दोस्त, हमारा भाई प्रोग्राम को लेगा, स्टूडियो में आ चुका है। तब तक के लिए हम चलते हैं लग जा गले जो सुतमेर शहर से मीला प्रोग्राम को सुनते हैं और मांग भी किया है। लता मंगेशकर की आवाज़ है, मदन मोहन की म्यूजिक है और राज मेहंदी का ये जो लाइरिक्स है। चलो हम आपको गाना आपके नाम करते हैं मीला सुतमेर का

0: जी दोस्तों, ये था एक आखिरी फरमाइश, क्योंकि हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक था। हमारा हिस्से का प्रोग्राम खत्म हो चुका है और लग जा गले हंसी रात हो ना हो, लता मंगेशकर की आवाज़ थे, वो कौन थी मूवी के नाम में, वो कौन थी, मदन मोहन की म्यूजिक और राजा मेहंदी का अली खान का लाइरिक थे। ठीक है दोस्तों, हमने एक नया सवाल को तैयार कर दिया है और अगर आप लोग हैं इस वक्त रेडियो पे, काफ़ी लोग रेडियो को सुनते हैं, हम सवाल करेंगे, सवाल और जवाब हम आज पूछेंगे, लेकिन चलेगा शुक्रवार के, फ्राइडे के ये सवाल जवाब का प्रोग्राम रहेगा हमारा, मंगलवार के हमारा प्रोग्राम नहीं है सवाल जवाब का। हम नॉर्मली गाना को, गीत को आप लोग के कानों तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, हम सवाल करते हैं, सवाल ध्यान से सुनिए। कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से गोरा क्या है, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से गोरा। अगर आप जानते हैं इसका जो जवाब है तो मुझे ज़रूर ऐप कीजिए और एक गाने का हकदार बनिए, एक गाने को मांग सकते हैं, जो भी गाना आप चाहते हैं हम उसे ज़रूर सुनाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों, हम आप लोग से विदाई लेते हैं, आने के और जाने के लिए वक्त होते हैं और मेरा जाने का वक्त हो चुका है, क्योंकि हमारा भाई, हमारा बड़ा भाई राजन द्वार का जो प्रोग्राम यहाँ से करेगा लाइव, वो आ चुका है स्टूडियो में। सुनते रहना प्रोग्राम, काफ़ी अच्छे प्रोग्राम है राजन द्वार का। हम यहाँ से न्यूज़ चलाएंगे और रिक्लाम, उसके बाद हमारा भाई राजन द्वार का लेगा। कई बजे तक रहेगा भाई आप रेडियो पे?
1: 6 बजे।
0: अब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक हमारा भाई रहेगा। प्रोग्राम को सुनते रहना, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तब तक के लिए मुझे माफी चाहते ही, हम मिलेंगे फिर मंगलवार को। राम राम, नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम।
2: Beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
3: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezicht.

दिल चाहे ही लिख दो नाम तेरा, अनु मालिक का म्यूजिक पर और अनजान का लिखा हुआ सॉन्ग अभी प्रोग्राम में चल रहा था। फा हिंदुस्तान रेडियो का शाम का प्रोग्राम है दोस्तों। इट इज फ्राइडा 25 सितंबर 2020, लगभग 2 महीना रह गया है दोस्तों। अभी सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, नवंबर, तो फिर दिसंबर, और ये साल खत्म हो जाएगा। हम सब कदम रखेंगे नया साल में।

0: रिक्लामा न्यूज़बर्ग तो चलेगा, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फा होन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन रहिए
1: म्यूजिक एंड इंफॉर्मेशन बाय फा होन हिंदुस्तानी रेडियो।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फा और हिंदुस्तानी रेडियो। 4:03 बीत गया है। आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम, पूरे 6 बजे शुरू में रहूंगा दोस्तों। उसके बाद मिस्टर जॉनी नंबर 1 का प्रोग्राम आप सुनते रहना। खासकर उसका जो न्यूज बरेखता है आप जरूर सुनिए। धुंधला बृहस्पति, माफ कीजिए, शुक्रवार है दोस्तों। ये प्रोग्राम आप लाइव सुन रहे हैं और सितंबर के 25 तारीख हो गया है। अभी 4:30 के बाद आइटम जो रहेगा शाम को वो है दिल। हर एक गीत जो दिल से शुरू होता है लगभग आधे घंटे तक पेश रहेगा। समाचार, फिल्म बरिख्त, स्पोर्ट बरिख्त, छोटे छोटे खबरें मैं आपको देता रहूंगा। तो कहीं मत जाइए, फाहो हिंदुस्तान रेडियो पर चू रहिए। फाहो रेडियो आप ही का रेडियो है दोस्तों। का सबसे बड़ा हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन फाहो रेडियो। हर एक काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, जैसे कि खास फरमाइश, जरूरी खबर, मृत्यु समाचार वगैरह वगैरह, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से। सिफर तक 3 से 5 2 2 4 सिफर पर आपको तार करना है।

उनका चेहरा है और आंखों का रंग गहरा है। क्या बात है दोस्तों, क्या हो सकता है, क्या हसीना है, क्या खूबसूरती छाई है कि आंखों का रंग गहरा है और चेहरा भी फूल की तरह है। दोस्तों ड्रग्स कंट्रोल हुआ है और उपमार मिनिस्ट्री दो आर्मी को पकड़ के बन गया है। ये लोग था और दृश्य कंट्रोल किया है, औरतें घर में बैठ के घुस कर और उन्हें फर्क क्रैक किया है। ये हुआ है डेन हाक में और दोनों आदमी को सिपाही पकड़ लिया है। खालिद आ है और दूसरा आदमी का नाम अभी नहीं दिया गया है। ये भी होता रहता है दोस्तों, मेरी तरह तुम भी। अलका एंड बाबू सप्रियो।

प्यार करके सारा देखो ना दोस्तों, डेन हाग का कमेंट बस लेव किया है कि जो डाक लूस का फर्ब लाइफ ऑफांग विंटर ऑफांग जो रखते हैं हर एक साल, तो अब तीन साल एक महीना कम रहेगा। जिस मान लिया जाए जब अक्टूबर से शुरुआत होते तो अक्टूबर से नहीं नवंबर से शुरू हो, इसलिए कि पैसा का प्रॉब्लम है। तो ये डाक लूस सेंट्रम जो है जहाँ पर लगभग तख तक लोग अंदर जाते हैं स्पोर्ट प्लान का आसपास में जो है, तो वो एक महीना और कम खुलेगा। जैसे न वैसे मान लिया जब चार महीना खुलते थे तो सिर्फ तीन महीना खुलेगा। व्हीकल्स हेल्थ का ब्रेक घर की ओर देखता है तो धीरे धीरे आइटम का शुरुआत होता है। दोस्तों तुरंत मैं शुरू कर देता हूँ और पहला सॉन्ग जो चलेगा आज का आइटम जो दिल है जो मानता ही नहीं, हैंगलोव में रहता है श्रीमान चंद्र रघुनंदन चंद्र की तरफ से जीवन साथी नैली के लिए बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ, और साथ साथ नैली की ओर से पति देव चंद्र के लिए बड़े प्यार के साथ ये सॉन्ग।

हैंगलो के रहने वाला श्रीमान चांदर रघुनंदन यानी मेरा बहनोई और मेरा बहन नैली दोनों एक दूजे के लिए ये सॉन्ग पेश किया। और अब की बार मैं चल वापस आता हूँ डेनहाग और यहाँ पर रहता श्रीमान मून जी बोत मून और माला दोनों के लिए सॉन्ग। आज शाम का आइटम जो है वो है दिल। और दिल तो पागल है मून भैया मून, सारा दिल संभाल के रखना।

तो पागल है, दिल तो दीवाना है, मुंह जिबोत और साथ साथ जीवन साथी माला, दोनों के लिए सॉन्ग पेश था। छोटा सा स्पॉट ब्रेक था दोस्तों, कोका काफ नेशन लीग का मुकाबला शुरू हो गया है और क्यूरासाओ कल खेला मुकाबला किया है कोस्टा रिका से। हाफ वीक ड्री न्यूल से पाछे था, न्यूल ड्री से पाछे था, फिर भी ये खेल फिर ड्री से क्यूरासाओ जीत गया है। और सुरीनाम आज खेलेगा, अभी मैं बताऊंगा, यूसुआ सिरेक्सी, वो उन्हें नीजाना से अलफ्तान में अब मौका है, इसलिए कि कल जो खेल खेला है नीदरलैंड डेस्टलैंड से, तो ब्रायन ब्रॉबी को ब्लशीर हो गया है, तो 25 साल का जो सिरेक्सी है वो अब ब्रॉबी के जगह पर मुकाबला करेगा। और फुटबॉल का खेल ऊपर वेस्टसाइड हुआ है कल, नहीं बुधवार को आबर बेचान ताजिस खान से 1-0 से जीता है। और आज खेला गया है पलस्तीना द्वी न्यूजीलैंड द्वी जापान द्री इराग्वे इन साउथ कोरिया द्री इक्वाडोर नल उज्बेकिस्तान द्री और ईरान इन। आज सुबह का मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया ब्राजीलिया और ये खेल इन में समाप्त हुआ है। तो जैसे मैंने कहा, एका का क्वालिफिकेशन वेस्टसाइड अंदर इन दिन तक ये भी रहेगा और ये आज रात्रि में हाल सिर्फ नीदरलैंड नॉर्वे से खेलेगा। और नीदरलैंड से एल्फ्टाल जो है वो कल मुकाबला जो किया है एसो वेस्टराइज शाफी हर्नांडिस के साथ, तो इन में से खेल खत्म हुआ है, एंड हुआ है। 23 मिनट में डेस्टलैंड एक दूर पेन बनाया, उसके बाद नीदरलैंड फलैंग में 20 मिनट पर जाकर खलेक किया है वेस्टराइज, तो अच्छा बात है, अभी तो खलेक हुआ है। और क्रिकलैंड जो नीदरलैंड का पूल में है वो 2-3 से सर्फिये को पछाड़ा है। और फुटबॉल का मुकाबला नेशन लीग का अंदोरा 1 माल्टा 2 नीदरलैंड 1 डेस्टलैंड 1 सर्फिये 1 क्रिकलैंड 2 नॉर्वे 3 डेनमार्क 2 पुर्तगाल 1 वेल्स 0 और कोसोवो 1 ईरलैंड 0। सुरीनाम जैसे मैंने शुरुआत में कहा, तो आज सुरीनाम नेशन लीग का मुकाबला में होंडुरास से खेलेगा और वो भी नीदरलैंड से तय 10 बजे रात्रि को। ये खेल आप ESPN पर आप फॉलो कर सकते हैं और आपको लाइव ये खेल देखने को मिलेगा। जब आज शुक्रवार है तो एरिडिविजी में फुटबॉल का मुकाबला है और PSV, जी हाँ दोस्तों, PSV खेलेगा SC हेरफिन से। आज देर रात्रि को शुरू होगा यह खेल, PSV तीखन SC हेरफिन। कल शनिवार है तो गुवाहाटी ईगल्स स्पार्टा रोटरडम, फेयनोर्ड उसके बाद फेयनोर्ड आसेट, फेयनोर्ड आसेट के बाद फॉर्टुना सिटार्ड FC ट्वेंटे और 9 बजे रात्रि को आयक्स NEC से खेलेगा। सोमवार रविवार को FC इतरक विनम टू टेस्टार आडू डेनहाग पैक्सवाल SC कम्बीर और आखिरी में एक्सेल्सियर SC क्रोनिंग से मुकाबला करेगा। इस वक्त एरिडिविजी का जो लेस है नंबर 1 तो नंबर 6 आज सेट ऑफ नंबर 1 SC वर्सेस नीखदी पेंट फेयनोर्ड SC वर्सेस सीफंट नंबर 3 पर PSV सीफंट वर्सेस 16 पेंट FC 20 सीफंट 16 आयास नंबर 5 SC 14 और नंबर 6 पर है फॉर्चुना सितार SC वर्सेस 13 पेंट। यहाँ तक छोटा सा स्पॉट पर रिक्त, दिल दिल से मिलाकर देखो, नजरों में छुपा कर देखो, अपना तो बना कर देखो, होती है मोहब्बत क्या। श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए।

0: ऐसी ही और
1: दिल से मिलाकर देखो श्रीमान आंद्रे राजकुमार के लिए स्पेशल ये सॉन्ग पेश था। दिल का आइटम चल रहा है दोस्तों।

भानु एंजॉय मुखर्जी का फिल्म सागर का सॉन्ग है और ये गीत श्रीनाम नोट पॉलर दम के रहने वाली मेरी छोटी बहन क्लैन शिष्य लीला द्वारका के लिए स्पेशल।

औदरदाम के रहने वाली लीला द्वारका मेरी छोटी बहन है, उन्हीं के लिए स्पेशल मैं ये सॉन्ग पेश किया। आइटम मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ दोस्तों, 3 मिनट रह गया है 5 बजने में। 3 मिनट 4:05 या फिर हैप्पी स्टेशन फा होन हिंदुस्तानी रेडियो, और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। रिक्लाम न्यूज ब्रेक तक, उसके बाद हम आपसे फिर मिलूंगा। कहीं मत जाइए, फा होन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुन रही है।

ही का हैप्पी स्टेशन फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। काम जो आपको रेडियो के सिरे कराना है, कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे दफ्तर से 0 सीफन तक 3 5 2 2 4 सीफ हमारा तार का नंबर है।

दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। सही बात है, जब कुछ बात करना है तो कान में कीजिए या और करीब आके कीजिए। अगर आप दूर रह के बात करेंगे तो सभी लोग सुन लेंगे और सभी बातें अभी नहीं सुनाई देगा। तो फिल्म अमानत का सॉन्ग है, पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी के आवाज़ में ये सॉन्ग चलेंगे।

कर न करो बात करीब आ जाओ। दोस्तों फिल्म फिल्म फर्ज का है सॉन्ग मैं चॉइस करके रखा हूँ। फिल्म फर्ज जो समय पर सुनाम देश में पेश हुआ तो थिएटर द पारल इनका ट्रेलर दिखा रहे थे। आप जानते हैं थिएटर द पारल दलिक्स फिल्म का एजेंट था और थिएटर जसोदरा नहीं थिएटर द पारल दलित फिल्म के नहीं था, थिएटर जसोदरा था दलित फिल्म के और इंडिया ओवरसीज का फिल्म थिएटर द पारल में पेश किया जाता था। तो थिएटर द पारल फिल्म फर्ज का ट्रेलर पेश करता था तो एक दो हफ्ता पेश किया, उसके बाद थिएटर जसोदरा भी इसका ट्रेलर शुरुआत किया। तो द पारल का मालिक जो था सोचा है कैसे हो सकता, मैं तो इंडिया ओवरसीज का एजेंट हूँ और ये फिल्म इंडिया ओवरसीज का है, कैसे हो सकता है कि दलिक्स फिल्म का थिएटर जो है थिएटर जसोदरा ये फिल्म पेश करे। तो ये बात रेक्टर के सामने दोस्तों जज के सामने पेश किया गया। लोग को मालूम नहीं था कि उन दिनों में देवर प्रिंट में भी फिल्म बनते थे। तो ये फिल्म फर्स्ट देवर प्रिंट में बना और ये खियाना में ये फिल्म पेश होता था दलिक्स फिल्म का थिएटर में। तो थिएटर जसोदरा का जो एडवोकेट था वो बताया कि देखो देवल प्रिंट में है और ये फिल्म हलो अभी खरीदा हो तो ये फिल्म जसोदरा भी पेश करी। तो रेक्टर थिएटर जसोदरा का मालिक को कहा कि हाँ आप सही बात कहते हो, इन्हें कहा कि आप फिल्म पेश कर सकते। तो थिएटर द पारल का जो मालिक था वो तो ये बात हार गया। तो ये फिल्म दो थिएटर में पेश किया गया दोस्तों लगातार। और क्या बात सही बात ये है कि थिएटर जसोदरा न सिर्फ फिल्म फर्स्ट पेश किया, नहीं इसके साथ फिल्म जब प्यार किसी से होता है डबल फिल्म एक पैसा पे पेश किया। तो ज़्यादा से लोग जैसे जसोदरा में जाते थे और द पारल में उतना लोग नहीं जाते, इसलिए कि एक पैसा एक टिकट से दो फिल्म आपको देखने को मिलता था। यह है उन दिनों का कहानी। तो मैंने बताया फिल्म फर्स्ट का एक दो लाइन में एक दो बातें तो मैं चॉइस करके रखा हूँ। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुरानो, चाहे तू मानो या न मानो। फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग है जिसमें जितेंद्रा एंड बबीता ने काम किया।

0: न माने फिर भी एक चीज मांगता हो, एक चीज मांगता है हम तुमसे पहली बार।
1: एक चीज मांगते हैं।
2: क्या
0: चीज है?

का पुजारी किशोर कुमार एंड आशा भोसले, दोनों की मीठी आवाज़ों में यह सॉन्ग अभी आपने सुना। दोस्तों, जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार, बात यह है कि बॉम्बे में 3 हफ्ता लगातार जितना सिनेमा है सभी सिनेमा में राजेंद्र कुमार का फिल्म सिर्फ पेश किया गया। तो बीच में राजेंद्र कुमार घर पर बैठा था और उसका धर्मपति बीबी का सहेली घर पर आया, तो ये दोनों बैठ कर बातचीत कर रहे थे। तो राजेंद्र कुमार ने कहा अपन बीबी से, धर्मपत्नी से, कि क्यों ना आप लोग चला जाता हो एक सिनेमा, एक पिक्चर जाके देख लो घर पर बैठे हुए हो। तो उसका धर्मपत्नी जो है, उसका बीबी जो है राजेंद्र कुमार के, वो कहा कि कौन सिनेमा कहाँ पर हम जाए फिल्म देखे, सभी सिनेमा में तो तोर फिल्म आपका फिल्म पेश है। तो इन्हें मालूम नहीं था कि 3 हफ्ता लगातार सभी सिनेमा बॉम्बे में जो है सिर्फ इनका फिल्म पेश किया। तो वहीं से इसका पड्डी मिला, इसका नाम पड़ा जुबली कुमार। तो जुबली कुमार का एक दूसरा फिल्म गोरा और काला, जिसमें हेमा मालिनी के साथ वो काम किया, उसी फिल्म का सॉन्ग लता एंड मुका, नाइट मुकेश एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर, दोनों के आवाज़ में सुनी।

है हमेशा धीरे धीरे बोलना, इसलिए कोई सुन ले आपका दिल का बात जो है, इतनी कमज़ोर मत बनो, इतनी कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतनी कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

दिले यार फिल्म का नाम है किशोरदा एंड पद्मश्री मोहम्मद रफी दोनों के आवास में एक गीत अभी आप सुन रहे थे फाह हिंदुस्तानी पर आप चुन है। और अब की बार दोस्तों ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें फिल्म दो रास्ते का सॉन्ग

ये रेशमी सुल्फे इन्हें देखकर जी रहे थे कभी। सेक्स बॉम्ब राजेश खन्ना। दोस्तों में मुमताज काम किया राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म में दो रास्ते। मुमताज शुरुआत किया फिल्म में काम करने के तो दारा सिंह के साथ लगभग 10 फिल्म बनाए मुमताज। तो जब दारा सिंह की फिल्म कम बने लगल तो मुमताज इंडिया ओवरसीज नहीं बॉलीवुड का जो फिल्म था इंडियन फिल्म्स तो उसमें ये शुरुआत किया दूसरे फिल्म में काम करने को। तो लेकिन फिल्म जो डायरेक्टर थे इन्हें काम पे नहीं लेना चाहते, कहा कि ये तो दारा सिंह के साथ झगड़ा लड़ाई का फिल्म में काम किया और लव स्टोरी में ये काम नहीं कर पाएगा। फिर भी जब आया जोर तोर से फिल्मों में तो लोग घबरा गया दोस्तों। लगातार लगभग 6 या 7 फिल्म बनाया जो एक बॉक्स ऑफिस निकला। सभी फिल्मों से ये फिल्म भी दो रास्ते एक हिट फिल्म था मुमताज का। लव इन टोक्यो 6 का स्पेशल आप जानते हैं जॉय मुखर्जी का कमाल था उस समय। जॉय मुखर्जी आशा के साथ या आशा परेख के साथ फिल्म में काम किया। नारा का मतलब क्या होता है दोस्तों?

सयोनारा के बाद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, बात सही है या नहीं? किसी न किसी से कभी न कभी और कहीं न कहीं दिल लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जब दिल है, छोटा सा दिल है, तो उन्हें देना पड़ेगा। जब दिल आप देंगे तो दूसरा दिल आपको मैसेज हो सके और बड़ा दिल आपको मिल जाएगा और प्यार भरा दिल मिल जाए। लेकिन जब दिल तू सैनिक रहे, दिल दबाए के रखिए, न बटिए तो कैसे चली भाई लोग, हम लोग चाहे बाट के खाए के। तो जब दिल है तो उसे दिल दिल से मिला कर देखो, आप जानते हैं, तो मिला ले उससे तो दिल, दो दिल जब मिल जाएगा तो दो दिल जब मिल जाएगा तो चार हो जाएगा दोस्तों। इन एंड इन इज फील, आप जानते हैं, जहाँ प्यार होता है वहाँ हमेशा ज़्यादा रहता है। फिल्म का काश्मीर के कली, श्यामी कपूर का कमाल था फिल्म में।

दोस्तों, चार बजे आपका सेवकिया आशा उम्मीद के साथ आप सभी को प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। मिस्टर जॉनी नंबर वन आ गया स्टूडियो में। अभी कुछ देर बाद उसका प्रोग्राम आप सुनेंगे, खास करके जो न्यूज बरिस्ता है जॉनी का, आप जरूर सुनते रहना। आने वाले शुक्रवार शाम में 3 बजे एक बार फिर मैं प्रोग्राम गीतों का संगम के साथ स्टूडियो में उपस्थित रहूंगा। आप सभी को एक शुभ रात्रि।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जात, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फान के सुनने वालों को हमारा राम राम, नमस्कार, प्यार भरिए नाम, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है और वो है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों आज ही शुक्रवार, सितंबर हो चुका है, 25 तारीख सितंबर हो चुका है। घड़ी की ओर देखा जाए तो परसिस्टवी मनीटर ऊपर से हो चुका है। स्टूडियो टाइट अभी आप हमारा बड़े भैया राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, खनिज किया है और यहां से 6 से 7 बजे तक हम अपना देश विदेश का समाचार आपको सुनाएंगे हर हफ्ता के लिए। आज भी हमारे यारो साथ साथ हमारा दोस्त, हमारा यानी कि कोलीखा साथी भगवान संजय भगवान भी आ गया स्टूडियो में, लेकिन यहां से हम अपना समाचार को और शुरुआत करते हैं।

ये था रॉबी उदित नारायण का ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों, जो आपको हमने बस सुनाई दिए हैं। हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम की लेकर हमारे यारों, हमारे दोस्तों। अब देखो भैया, एक बरिश के बिटिया बेबी, भैया एक बरिश के सी एक आसन बेबी, एक बरिश के लड़का सूरीनाम में बूढ़ के मर गए भाई। तो बोलिए जॉनी उतो ना गए हुई पौड़े तिस्खीन खराब में से इंदर दांत उपौड़े ना गए, बाकी एक बल्टी पानी में बिचारी गिर गए और ओमा ये लड़का बिचारी मर गए है। बहुत दुख के बात है तमाम रेडियो फाहुन के ग्रुप इसके दुख में हम शामिल है। इन यार हमें जो बुधवार के अपन घरे एक बल्टी पानी में गिर गए है। ये बात हुए क्वाकार स्त्रात में श्री नाम है कि ये फ्रांसी खन के गोसा स्त्रात है और बोले फोरनोमन वार्ड के एक बरिस के लड़का बुढ़ के मर गए बल्टी में भैया। अब खैफत मोनेबली से इन वास्तर इंते वार इन मेट वाटर खफिल द एमर स्टोन फॉर मुडलक प्रोबेर दे से इच आई द एमर त पाकन एंड फील अपन लड़कन के मोई से देखियो भैया। एक बरिस के लड़का अपन जिंदगी में बिचारी कौन चीव देखे रहा और वो गुजर गए है भैया, गुजर गए है और बहुत बहुत दुख के बात है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता। अब देखो एगो नई खन तीन यार के गुमान के लड़की लाश हो गए सूरीनाम में मौसी। 19 बरिस के लड़के लाश हो गए सूरीनाम के बांचित हुए है जेकर नाम बा लेडीज अनाबेल बालसेंदे मार्टिनेस इन सूरीनाम। बताया गया है कि 3 महीना हो गए ये लड़कियां लाश हो गए है, परिवार बड़ी दुख में है और सब एक मिलजुल के खोजे है। द मुदर ही शेख में आंद्र नोट ओप्रो खवें में नियो और बोले हैं एक्स्ट्रा डेड इन फॉर हर बसौरख्त है इन द टेलीफोन फॉर हर डॉक्टर दिस ऑफ फॉल्कस द मुदर मोमेंटेल इन हंडन सैन फॉर मन दिस एन आइसोलेटन अंडेड आज ब्लाका ओकर माई एगो आदमी संग एकर भलाका बोले है स्टार्ट ऑफ एंकल फोटो दिस फैमिली ही फर्स्ट टेरक द मदर सेड दैट हर नीट लुक हर डॉक्टर सेल्फ टू स्पीक एंड देयर इज एक्टर गेन बेवेस्टिंग दैट दिस मैन अ स्ट्राबार फेट ही फॉर प्ले की बोले ओही ना ओके लेके चल गई हुई बोले है 2 तारीख दिसंबर से लाश भेले। तो बोले हैगा खबरन ऑफ 27 दिसंबर 2006 सांतियागो क्यूबा में और बोले फरट्रैक बोंदे से हर फैमिली इन सैन माइकल in Padron in Havana me or bole hai kumandi in Suriname wune in Mensels Kukuba ke admi dheer Suriname me rahe bhaiya aur ye sab cheez to hota hai dukh ke baat hai 19 barish ke bitiya koi laash hui hai bhaiya to bahut bahut dukh ke baat. Ab dekho bhaiya DJ Frey Khalatan Mensens smuggle ke baat hui admi ke naam ba DJ na baje wala nani ekar namwe hai DJ RS sipahi bole hai ka baswar maak tegen verder vrijheid feitbeneming. Advocaat John Maury Neptua, hey bhaiya, bataye gaye hai, 16 tarikh september ke bole ke pakdi se under mein mention smokal and mention handel ke baare mein bole hai ga, ye namiya karat raha, jaane mention handel ke baare mein kaise hamare janta hum jai, Ruslan bhaiya, Ruslan badmaashi kare, bahut din se poothe nwa boli la nani, Ukrainer paida ge, ab u apan plane उड़ावे भैया जो नाटो हैगा नाटो के ओम खैफिन में उड़ावे कहने पोलैंड के खरेंज पे उड़ाई से और का बोले हैगा अब यहां बतावे स्विस एंड फिंस गेवेक फ्लिकटेकन से डोंडरदग uitgereik om Russische militaire luchtvaartuigen te onderscheppen meldde Finse luchtmacht die vloog boven de internationale wateren van de Finse golf. Usab gaile Sweden ko Finland ke bole hai gai ko groep Russische toestellen stelden vast dat het ging om een meerdere gevechtsvliegtuigen en de transportvliegtuig Zweden, John en Finland, hega beide namelijk een NAVO-lid, werken samen om het luchtruimte te verdedigen. Ik erbaan in Finland, bolle, is de keer dat de landen gezamenlijk zo'n identificatiemissie uitvoerden. Meerdere NAVO-landen, Oost en Noord-Oost-Europa, hebben de afgelopen maanden melding gemaakt. Rusland schending in de luchtruim. Oude hamangele, jane, hamelijke verleider, John Hega, Mark Rutte, ik erbaan. बारे में क्या बोले हैं
कहीं ना एकर बारे में बोलत रहा। अब देखो भैया 6.6 मिलियार्ड यूरो के बारे में उक्राइन के सबन फ्राई करे से एयू और भरी के नानी हम लोग के बालास्टिंग वहां भरीगा। शुक्रवार के से स्टेम करे से उक्राइन के 6.6 मिलियार्ड फ्राई करे से मिलिटेर अंडरस्टैंड करे से जो रसलान से लाई हुए हैं एयू बैटलांस शेफ काया कालास अब एक सेट गेल्ड ओम कम फ्राई uit de Europese Vredesfaciliteit EPF's ke bare me or bole 4,7 miljard is bedoeld voor de EU-landen zelf waarvan sommige landen volgens hun volgend kalas hebben aangegeven. Toch maar de janta aap loko hem bus samachar sunate hi rehte hai. हमारे जनता आप जोन आदमी यानी कि बैटलांत में है अमेरिका में है तो मंगे सूरीनाम के पासपोर्ट तो हुआ जाए के बनवाई सके है या बतावे सूरीनामर्स दी इन हिन बैटलांत अन क्राइकन अ न्यू मोखलकाइट ओम हिन पासपोर्ट साकन अफ द हैंडलन और बोले प्रेसिडेंट सिमोन बुधवार के न्यूयॉर्क में पासपोर्ट में बोली से बोले हैगा Application service officieel gelanceerd. De dienstverlening moet het aanvragen van een Surinaamse paspoort toegankelijker en efficiënter maken. Terwijl de beoordeling, goedkeuring en de uitgifte volledig onder verantwoordelijkheid van de overheid blijven. Dus de Surinaamse paspoort mag je vanuit New York meer. Dat is het nu wel mogelijk van afgelopen woensdag. Bolle paspoort blijft Surinaamse staatsdocument. Ambitie reikt verder naar New York. बहुत लंबा चौड़ा लिखा ले जनता इसके बारे में आप जनियो मंगियो जाने कैसे हम न्यूयॉर्क में बनावे सूरीनाम के पासपोर्ट दान मुझे यूली एफ तोख एफ ऑफ द वेबसाइट फन ओवरहेड खान सूरीनाम के कर्जा भैया प्लाफोन हबड़ा कर दे इसे नानी प्लाफोन वहां हबड़ा कर दे इसे स्टार्टस्कूल फन सूरीनाम यूनिट 2026 में Bolle daalt eraan, maar blijft ruim boven een wettelijke plafond van 60% van het bruto binnenlandse product. Volgens de wettelijke berekening bedroeg de schuld van 119,6% van de BBP. BBP kan met lepje jetrat ook inkomsten, dus we hebben aanwezig. Jetrat is export, ook ze jada toke namake karjale weke. Bakke is op deze pahile bouters getijd pe plafond wa overschrijden kardera is op pin kardese bhaiya. कर जो आप बहुत जबरजा है और उसे संबंध द्विंगी करे कुर्सुआ बचावे के मकर जो तो सबके चाहिए भरे के द श्री नाम से इकोनोम बोले हैं मेल की देर तक बुलेटिन है द स्कूल्ड इन फॉलोइंग द वेटलक डी डेफिनेशन मार्च 2000 मार्च में 121,1% लागर यूनि में बोले 119,6% और बोले फॉलोइंग इंटरनेशनल Die daalde de staatsschuld in dezelfde periode van 76,6%. De koets economie van Suriname kan aanplukken. Want de economie van Suriname gaat niet goed, mensen. Gaat niet goed. Op de kop van Suriname. Banyane to jane charo bagal koike dukandare. Ze hebben een wachter. Dare bhaiya nikeri ke oor hem jaila nani. Nikeri mego dukan ke naam ba free di risi. वेख में हुआ पे गो वाक्तर के हाथ गोड़ बांध के सुता है रहा चोर भाई निकेरी खलेत आन हो दें बोले द खवलदार खबरूफिंग बे द विंकल सा बोले हैगा न आगे 45 यार के बेजी तेज रूफ वर्त वाक्तर के कनीफल अख्तर खलातन तरवेल द दांदर एर मेट अन ग्रोट गेल बदला सुरिनामसे डॉलर फान दोर गिंग और बताएगे दीपस्टाल मेट खवल 7-8 सितंबर के बांच चितवे रिसर्च पकड़ी से और हम तो सोचे निकेरी बहुत फैलक भैया निकेरी हम जाहिला तो फैलक फूलक करेला लेकिन अब देखो निकेरी में का होवे लगल है ये बात होएगा सैरान वेख निकेरी एंड फॉर फॉल्स आंगहौदर में पकड़ाई गए हैं पैसा खेत में नीट बे हेमान खतरोफन पैसा ना पैसे भैया तो पैसा कहीं होलोल खोद के गाड़ देले होई मौसी तो कहां से तू पइए उ बोलिए हम जाहलिया काट ले आबे तो फिर म जी करो तो
ये बातचीत है हमारे प्यारे प्यारे सूरीनाम की जनता, हम जाने झीनी झीनी बिजनवती।

एकर चदरिया इनमें झीनी हुई गे भैया पतरा हुई गे छोटा हुई गे है। तो झीनी झीनी के बाद अभी अभी आप लोग को और कुछ न कुछ हम बताएंगे, लेकिन हम चलते हैं सूरीनाम में। तो लोग जानो है रोमानो मेरिबा के बारे में। बन रहा भाई कितना दिनी बाउतर्स के भैया क्लाइन जोन है और ये बन रहा रूफ में और कौन ची के जब जोने से में बेकर अन अन अन जाने बाउथर्स जब बनल है प्रेसिडेंट एके छोड़वा दे रहा भैया। हाँ तो अब रोमानो मेरिबा बन गे रहा लेट भैया एनडीपी में। मकी अब ये रमिया ना तफरीद रहा एनडीपी में नानी अजय तू एनडीपी में ता तफरीद बाटे ना मुझे वत खंदून। तो ये रमिया कांकरी से रोमानो मेरिबा बोले एगो पिन धर दी से बोले अब हम एनडीपी के लेत ना बाटी वुर्स दाख 23 सितंबर के ये अपन लेत माचखाप एनडीपी के बोले हम ओमा से बोले हम अपन इन ट्रैक कर ले ली बाटी बोले का ट्राफास दे दाद मेल ट्राफास दे बोले मेरी हिबा हीव से बसलाइस खरीफ तरक केर मार माक करी से एनडीपी फोर्सिस्टर जेनिफर खिरलिन सिमोन प्रेसिडेंट के और बोले इन से ब्रीफ बना दुकते है दा से फर्ट्रेक नीट हर गफोलग इस वा रुशी ऑन फ्रीड ऑफ अन पर्सोनलिक गस्किल मेरे फोर्सिस्टर ऑफ अंदर लीडिंग फन पार्टी लीडिंग बोले फोक्स मेरी हिबा खात ओम अन पर्सोनलिक बसलेसिंग वारोवर है खुद हीव नागदा और बोले ऑन दा से फर्ट्रेक स्प्रीक थे वार uit de periode of betalen we hij hier meer hierbij niet kregen van ja omdat ik kijk op positie hoe ze naar midden lawaai hij is de pleegzoon van Weilen ook president van de voormalige NDB voorzitter DC Bouters. Zijn verleden kwam meerdere keren in de nieuws van wegen strafzaken 2005 met Pandra Bariske Jalpaila voor onder mijn roofkaler uit Janse Mare op Bouters 2011 met een gratie verlinker 2017 met volgde opnieuw een veroordeling oordeling of op die 3,5 jaar ke jahal pai se behen roof of verpaal op de afgelopen jaren probeerde Meriba nadrukkelijk een andere weg in te slaan. In 2023 behaalde hij zijn bachelor kini se kontje bhaiya patana bole hal kari se aur bole mangela badhiya aadmi bare bole hai ga politieke vorming kreeg in zich beschikbaar willen stellen wanneer de partij een beroep op hem zou doen. To bhaiya ietra ikarba प्लीज फादर जो रहा और वह बहुत से के छोड़वा दे रहा उतरा उतरा जान मारी से और भैया एनडीपी में इतोखरा लेट बन गया रहा और तुझे ये इतना बड़का बड़का क्रिमिनल के अख्तर खरोन जो ने भाई तुझे ये के लेट मत छाप देवे हम जाने ला फोर्स इतर बहुत के प्लीज सुन है दन इज ऑलस कुक एंड ए मेंस सो सो सो गाट इन सूरीनाम एनमाल। हम जाए ले भैया ब्राजीलियन के मछरी के मछरी ना बराया बरैया के और नानी तीन गो मिंदर आरख लड़कन मंगरवार के जोन बरैया काटी सो के ब्राजील के भैया ऊंच दाई चेती से हर ने तो स्ट्रांड के मानचित हुए नानी एगो बोले दो ने दुई बरिस के एगो 12 बरिस के को 14 बरिस के लड़का के काटी से भैया एम्बुलेंस सब के ले गए हैं बताए गए हैगा ऑपरेटर ऑफ अन खराब मशीन ओप ट्रेन बेचक रहा काम करे में और बोले तेजन वर्क समय क्वाम द बेयन फ्रेय दिस कहीं पे लुकान रहा और खराब मशीन काम कर द बरैया उद्यान भैया हुए पे तीन गो लड़कन रहा बोले दी ऑफ द सेल्फ द ट्रेन ओनर वेयर द फॉरवॉकर डोर द बेयन आंगवालन और बताए गए है का द बेयन दिस वेयर मेट इन इन गस्काकल तो ई लड़कन भैया बड़ा अफसोस के मान थे चिकन हाउस में है अब होप करेला से बढ़िया जाए दिस किंडर मींस अनस्कूल्ड किंडर दी निक्स हैव गदान अब देखो भैया 6 jonge Surinamers geven plastic vervuiling een gezicht in 6 story dump is van itra bige plastic भैया तो अब लेके 6 गो लंदन इकर बारे में काम करे है मशीन खवेर इन मस्कर्स इन ऑटो बेरा ग्रासाल्को 6 verdachten हुआ सब पकड़ी से। दोस्तों हमारा समाचार धीरे-धीरे खत्म होने को हुआ है एक दो समाचार आप लोग को और हम बताएंगे एसएलएम क्रेक फ्रॉम ऑफ दिसंबर वेयर फ्लिक टेक फॉर द फॉर
gebieden in eigen kleuren. Middellandse Atlantische route mee. Simon spreekt bij VN over de dreigende boskap van de landbouw en herstel. Betalingen van de slavernijkebare mee. Israëlke premier Benjamin Netanyahu bouwt Jabertje Lane Bhaya heeft in zijn toespraak tijdens een plenaire debat aan de algemene vergadering van de VN eens te meer Israëlische oorlogsdoelen herhaald, mensen. Tot Sapkooi, Braziliaanse president Luis Inácio Lula da Silva, Mangerwaarke B. Algemene vergadering door een Amerikaan heel scherp uitlaat, Kerisiga. Bollehega ook een verkiezing door charter in oktober. Kebabole buitenlandse inmenging om Obama. Lula die zich kandidaat stelt voor de vierde ambtenaarstermijn, zei de Brazilië niet zal toestaan dat de buitenlandse of binnenlandse actoren de volkswil ondermijnen. De Braziliaanse democratie van de Brazilianen verklaarde hij tegenover de wereldleiders in VN-mensen. Toe je baan, maar dat agenten die fout eer gaan riskeren ons laag bij jou te bekend. Bakita bosa van een behoete jabarikare he nani. Behoete jabarikare he. Keke pakario or keke na pakario.

और दोस्तों इसी ट्यून से हम अपना प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा तुम्हारा मिलन रेडियो फोन के माध्यम से फिर मिलेंगे। बाय बाय स्वाई स्वाई जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। हमारा प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम के 6 से 7 बजे तक यानी कि लाइव यानी कि न्यूज पढ़ते हैं। मंगलवार को शाम को 6 बजे रविवार को इस प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं। बस सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय स्वाई स्वाई।

0: और त्रफसी बुरु का ये जों है हाउस होल। कोई जमाना में बड़ी टॉप सॉन्ग थी दोस्तों। उसके बाद में हम चलते हैं ई वंग एस बोंग और उज्जर मछरी।
1: अवे दिविजी

पुंता हो और पुंता वानी किरमी, तो दोस्तों जवानी याद हो जाते हैं, पुराने यादें आ जाते हैं, ताजा हो जाते हैं। तो और क्या है, क्या है अगला गीत, ईवान की ओर हम जाते हैं, आओ सुना जाए। यूपी पॉपी सॉन्ग।

फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी और चित्रा लोवे चित्रा कोई के साथ भाग्य है और ये कौन चित्रा है सब चित्रा ना भाग्य वाला है कोई भग जा है सर मक्का कोई भग जा है कंडाल कोई भग जा है वेलखदा हाँ बे से ही दे में भग जा है और कौन चित्रा है ये आप लोग जानो अपने प्यार के धोखा दे दे कभी कभी लोग भाग जाते हैं तो हम चलते हैं कपड़ा धोने के वॉशिंग मशीन में।

और दोस्तों जैसे बताएंगे आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

मेरा रंगला और राम किशुन कविता, राम किशुन का ये गाया हुआ ये सॉन्ग है यारो। हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो क्या होगा, देवी निहा सरस्वत राधे व्रजा, और क्या क्या नाम है इसमें दोस्तों, आओ सुना जाए ये क्या सुनाते हैं।

और कुछ और जोंग हम जूना दे है। तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोंग के बारे लोकल जोंग की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोंग क्या क्या है आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राणों में आखिरी प्राण बस आखिरी लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देन हाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल्सों आप लोग को मार सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे।

हेलो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए है गाए है मोहम्मद शरीफ ई झांक ने हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और टंडोले भी है। दोस्तों हम जरूर जलते हैं, हम कहां जलते हैं, महबूबा की ओर। महबूबा क्या करते हैं?

ये दोस्तों मूवी के नाम थी शोले शोले एन शोले 1975 का सुपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगती हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो सुनते रहो। खनीत इरफान, वहां सामा खनीत दुख।

0: मूवी, मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। जोंग का नाम है ये पर्दा, ये पर्दा, और हटाकर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो जरा।

you. It is Johnny number one's time. And Johnny's जॉनी बॉयज टाइम माइन। और दोस्तों आप जानते हैं आज नाचना जरूर।

0: भी राह रहेरी। उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउंड में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामतुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shakira on the beat
0: and beat।

और मेरी नसीब में तू है कि हम है। रमता जोगी, रमता जोगी, रमता जोगी।

रमदा योगी, रमदा योगी के बाद हम और कहां जाते हैं, और कहां जाते हैं। जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टेरक तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

अहंत हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और ये है मूवी मूवी मूवी के नाम क्या है मेरे ख्याल से भाई भाई गीता दत्त इस फिल्म में काम किए हैं। आओ सुनाइए कौन से नंबर ये है।

मुझे बता दे तू भी किस पे आ गया है। गीता दत्त का ये सॉन्ग थे हमारे दोस्तों। और तो इस मूवी का नाम है नागिन। बहुत लोग देखकर इस फिल्म को पसंद किया है। और परमाशी मोहम्मद रफी और रफी का ये यानी कि आशा जी का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर सुना जाए।

होगा। मूवी के नाम थे नागिन का ये सॉन्ग, सुपर हिट्स फिल्म थी हमारी दोस्तों। ये भी एक जिपर जिपर एंड जिपर सॉन्ग थे पद्माशी रफी के बाद में हम आते हैं नाइटिंगेल लता जी और तलत महमूद का ये बॉलीवुड क्लासिक सॉन्ग है, नीखती होंद शस्त्र का ये गीत है और सुना जाए।

यीशु पर जोंते साथ यार किशोर दादा क्या सुनाते हैं एक डुएट के ओर हम लोग आज चला जाएं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर अपना कला को बहुत ठीक से किया है।

और मैं प्यासा तुम सावन द्वेत सॉन्ग किशोर दादा और नैतिकेल लता जी का और ये सुपर सॉन्ग थे। एक दोस्तों हम चलते हैं एक और हो या आए हैं दूर से, आए हैं दूर से रेडियो फोन में और दूर दूर तक हम सबका आवाज तो जाता

और दोस्तों इसके बाद तो हम चलते हैं एक सुपर सॉन्ग की ओर। दूसरा आदमी जिसमें इस मूवी में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने काम किया है, किशोर कुमार का ये सॉन्ग है लता जी के साथ। और ये गीत गाते गाते गाते गाते ऋषि कपूर और नीतू सिंह में प्यार हो जाते हैं और शादी भी कर लेते हैं।

और नजरों से तो कह दिया है प्यार में क्या क्या हो जाते हैं। और अगर आपको प्यार भी हो गया है ये छोटी उम्र में तो ये गीत आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। छोटी छोटी उम्र में क्या क्या ना हो जाता है और वो कभी बाद में पछताना पड़ता है नहीं, बाद में उसको हम पछताते ही नहीं, सोचते ही कि खूब किया है, ठीक किया है।

मूवी के नाम है बैराग, छोटी सी उम्र में। और नायती जी लता जी का ये जोंग थे जिसमें दिलीप कुमार और शहरा मानू ने काम किया है। बाद में जाकर ये दोनों भी शादी कर लिए थे। उम्र में शहरा मानू बहुत छोटी थी दिलीप कुमार के आगे, फिर भी छोटी सी उम्र में प्यार तो हो जाते हैं। और कभी कभी हम चला जाते हैं उस ओर जब कभी हम भी 16 साल के थे। आओ सुना जाए तो क्या होते थे उस जमाने में जब हम लोग 16 साल के थे।

17 भी बिट जाएगा और 17 बाद में 50 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो सोचते रहना कि क्या हुआ है। फिल्म बैराग की ओर हम फिर एक बार चलते हैं।

बड़ी खूबसूरत है हसीना, बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: ऐसे भी हो

बड़ी खूबसूरत है हसीना, बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: मेरा नाम है
1: आशिक,
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है।
1: जैसे भी हो तू, जैसे भी हो, जैसे भी हो।

हिंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों देवानंद का ये फिल्म है जो आप लोग को देखना चाहिए, इट्स ही मूवी फिल्म है। तो हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर। ये भी एक सॉन्ग है जो चोरी चोरी जो तुमसे मिली, नाइटिंगेल लता मंगेशकर और करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और तुमसे हो हसीना कभी तो मोहब्बत तो मैंने करनी थी। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मूवी का नाम है फर्श 1967 के सॉन्ग थे। उसके बाद हम चलते हैं आशा जी की और आशा जी मूवी का नाम है पूजा का फूल और आशा भोसले का ये सॉन्ग है।

0: परवर का ये सॉन्ग है। और आप जानते हैं रफी साहब कितना सुंदर सुंदर गीत को गाया है, तो ये आप सबके लिए भी है।
1: There is no need for panic. We are crossing some highways. Please remain where you are. And for your entertainment, Miss Colette will give you an exciting cabaret number.

और अब नाराज खुदा कहरे करे दोस्तों, क्या जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंगा और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता है।

की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की आरती बर्मन के साथ पर, ये टाइटल सॉन्ग नेगतीन द्रियन तख्त का अगर तुम ना होते फिल्म का नाम है। चलिए आप तत्पर हैं, आप जहाँ भी होंगे ये जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं जी हाँ मैती मुकेश इस तरह से फिल्म छाया में से निकाले हैं निगति एन सस्त 1961 का ये गीत।

मैं तो मुकेश और लता जी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो फिल्म छाया में से निकाल कर सलील चौधरी के साज पर। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, वह है रफ़ी साहब की, और रफ़ी साहब का ये गीत फिल्म साजन की सहेली में से, फिल्म साजन की सहेली में से निकाले हैं उषा खन्ना के साज पर। बहुत दिन हुए ये गीत हमने भी नहीं सुने हैं, चलो मिलकर सुनते हैं ये प्यारा गीत।

बूंदे सभी सितारे, ये प्यारा गीत सुनाया गया आपको फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। फिल्म साजन की सहेली में से निकाल कर हमने पेश किए उषा खन्ना के साज पर। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी एक बार फिर।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस दोनों मिलके सुनाए हैं ये द्वैत हमने पेश किया और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपका हृदय से स्वागत है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये गीत। आशा जी और

क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। रफ़ी साहब आशा जी आपको सुनाए कुर्बानी में से निकाले हैं, इंडिवर के लिखी हुई गीत, कल्याण जी आनंद जी के साज पर चला ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम सुना रहे हैं आपको आशा जी और भूपेंद्र की, जी हाँ, बप्पी लहरी के साज पर ये है।

वो प्यार के लिए जिससे हमने छोड़ दी है दुनिया। भूपेंद्र और आशा जी मिल के आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं, देखते हैं फिल्म बंदिश। फिल्म बंदिश में से निकाले हैं 1980 का ये गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ।

फिल्म हंसते जख्म में हम आपको सुनाए हैं रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में मदन मोहन के साज पर।

कितना प्यारा वादा है रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में पेश हुआ ये शानदार गीत फिल्म कारवां में से निकाल कर। www.fawnfm.nl पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो चलिए, आपका स्वागत करते हुए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है, बस सुनिए। नारायण और अलका याग्निक जी, फिल्म धड़कन में से निकाल रहे, जी नहीं सॉरी, फिल्म

कितना प्यारा है ये चेहरा। उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी मिलके आपको सुनाएं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। गीत हम तो रख दिए हैं प्लेयर में, लेकिन इसमें कितना आधा झूठ आधा सच, ये गीत के बारे में इस वक्त मुझे पता नहीं है, शायद भूल गए होंगे, लेकिन कितना सच कितने झूठ पता नहीं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिए।

वाह क्या बात है, रविंद्र जैन के साज पर लता जी और रवि साहब की आवाज़ में सुनाया गया फिल्म फकीरा में से निकाल कर 1976 निकली थी का ये गीत आधी सच्ची आधी झूठी। इसमें आधी सच्ची भी थी आधी झूठी, और दूध में पानी में जना कोई मलिक मान ने लिखा, लेकिन बहरहाल ये शानदार गीत हमने पेश की ओ फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एवरग्रीन किशोर कुमार, बहुत प्यारा गीत है, सुनिए इसे। जी हाँ अवश्य सुनना, ध्यान दीजिए।

ये दीवाना एवरग्रीन किशोर के किशोर कुमार जी की आवाज में हम पेश किए हैं ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं लेकिन हमने भी चून नहीं किए हैं। चलो सुनते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं कि मार गए मुझे तेरी जुदाई। चलो सुनते हैं। तख्त का ये गीत है।

अच्छा, जुदाई के बाद यही थी, हमें तो पता नहीं था। बहरहाल हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले सोनू निगम जी। सोनू निगम जी नीखन तीन सेशन सेस का ये गीत है, चलो सुनते हैं।

नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नई गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नई गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चला गए एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की उन्होंने आपको बताया हो फरफा और हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे। ये शानदार गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

ए चांद की जेवाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेवन से हस्तक का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफी साहब की आवाज़ में निख दी इन सेवंत 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नई गिनती फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

जा, हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारीख गवाह है, यानी खुशकी देने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन सशन शस्त्र का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ है, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकिति तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मारी के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। इंद्रिय संहित कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।